नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना। प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को। युवा शक्ति, देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगे करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट, यानी कि मैं। अगला कार्यक्रम

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो घणी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है, फार्म भरो जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंग्रा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि हम हमारे बच्चों की जो जिज्ञासा है उसे कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिज्ञासा का अर्थ होता है कुछ नया सीखने की इच्छा। अंजलि जी, ये किसी भी चीज को जानने की रुचि या फिर जिज्ञासा हो सकती है। श्रोता साथियों, कह सकते हैं कि जिज्ञासा एक बच्चे की अच्छी विशेषता होती है।
1: जी जी।
0: कुछ ऐसा करने की जो उन्हें नहीं पता हो, और साथ ही किसी चीज को लेकर जानने की तीव्र इच्छा को भी हम जिज्ञासा कह सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी जी।
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोताओं को गीत सुनवाए हम पहले अंजलि जी।
1: जी बिल्कुल। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश हमने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को विषय से रूबरू करा दिया था कि आज हम बातचीत करने वाले हैं बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के क्या उपाय हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश कि बच्चों में जिज्ञासा एक आम विशेषता है। श्रोता साथियों, जब आप उन्हें कुछ नया दिखाते हैं या बताते हैं तो उनकी आंखों में चमक देखना एक सुखद अनुभव होता है।
1: बिल्कुल,
0: और जबकि उनका सवाल करना, सीखने की उत्सुकता और हर उत्तर को जानना आपको कभी कभी परेशान कर सकता है।
1: जी हाँ,
0: उनकी बच्चों जैसी जिज्ञासा नन्हे बच्चों के लिए अद्भुत काम करती है।
1: जी हाँ,
0: यानी कि हम देखते हैं कि स्वाभाविक जिज्ञासा वाला बच्चा लगातार खोजबीन में लगा रहता है, सीखेगा, रचनात्मक होगा, लिंक से हटकर सोचेगा और सामान्य चीजों में भी कुछ नया खोजेगा।
1: जी हाँ,
0: इसलिए अगर आपका बच्चा आपसे कोई सवाल पूछता है तो जान ले कि उसने सोचना शुरू कर दिया है। आपके बच्चे का विकास और संज्ञानात्मक विकास भी अपनी गति से आगे बढ़ना शुरू हो गया है।
1: जी हाँ,
0: बच्चों में जिज्ञासा के लाभों को और उनकी जिज्ञासा को विकसित करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है।
1: जी हाँ, जैसे कि अंजलि जी, जिज्ञासा बच्चे के दिमाग को अधिक सक्रिय बना सकती है। साथ ही यह आपके बच्चे को आश्चर्य की भावना देती है और यह आपके बच्चे को अधिक सोचने और सवाल पूछने के लिए भी प्रेरित कर सकती है।
0: जी हाँ,
1: आपको बताएं तो यह बच्चों को अधिक चौकस और जानकारी के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाती है। जब कोई बच्चा अंजलि जी जिज्ञासा जगाता है तो इससे उसे अपने आसपास की अलग अलग चीजों के बारे में ज्यादा जानने का मौका मिलता है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि वे अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोचने और अलग अलग तरीकों से सोचने की कोशिश करने लगते हैं। और इसके अलावा साथियों, जिज्ञासु मानसिकता को बढ़ावा देने से बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में ज्यादा उत्साहित हो पाते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं और अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढते हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि बच्चों में जिज्ञासा बच्चों के सीखने और विकास में एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम करती है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि कैसे जिज्ञासा उन्हें जीवन में छोटी छोटी चीजों का अवलोकन करने में सक्षम बनाती है।
1: जी जी,
0: उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया करती है। इसी के साथ कशिश, हम देखते हैं कि बच्चों की जिज्ञासा जो है उसको विकसित करने की कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने की होती है।
1: जी हाँ,
0: उसमें सबसे पहली बात आती है मुझे आश्चर्य है वाक्यांश का प्रयोग करना।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि श्रोता साथियों, अपने बच्चों से बात करते समय अक्सर मुझे आश्चर्य होता है वाक्यांश का आपको प्रयोग करने का प्रयास करना है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि हर शाम सूरज क्यों ढल जाता है, या मुझे आश्चर्य होता है कि तारे क्यों चमकते हैं। इससे उनकी जिज्ञासा क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें सोचने का मौका मिलेगा और वे ज्यादा जिज्ञासु बन पाएंगे।
1: जी हाँ, साथी श्रोता साथियों, हतो उत्साहित न हो, यानी कि अपने बच्चे में जिज्ञासा पैदा करने से वह अपनी पसंद की चीजों में दिलचस्पी लेने लगेगा।
0: जी हाँ,
1: अपने बच्चे को शौक या फिर अन्य रुचियों को तलाशने से रोकने के बजाय आप इसके विपरीत करें।
0: जी हाँ,
1: यानी कि आपको ये पता लगाना है कि आपके बच्चे को क्या प्रेरित करता है, उसे खुले दिमाग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही उनके कभी न खत्म होने वाले सवालों पर भी आप परेशान न होए।
0: जी हाँ,
1: इसके बजाय उनके सवालों का धैर्यपूर्वक और मुस्कुराहट के साथ जवाब दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के नेतृत्व का हमें पालन करना है।
1: जी हाँ,
0: यानी कि श्रोता साथियों, ज्यादातर लोग अपने बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए उत्सुक रहते हैं।
1: जी जी,
0: कभी कभी इसके विपरीत करना भी फायदेमंद हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों बताना चाहेंगे कि अपने बच्चों को आगे बढ़ने दें, चीजों को अपने नजरिए से उन्हें देखने दें, फिर जिज्ञासा को अपनाते हुए अपने बच्चों के साथ जुड़े। जब वे खोजबीन करने निकल पड़े, इससे बच्चों का सहारा महसूस करने में भी आप मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, साथियों उन्हें चौकस बनाए, यानी कि साथियों अपने बच्चे को चीजों की ओर इशारा करके और सवाल पूछकर आप चौकस बना सकते हैं। आप कोई उनके साथ खेल भी खेल सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए, हर एक एक्टर्स की ओर इशारा करें और फिर अपने बच्चे से उसी रंग की चीजें ढूंढने को आप कहें। जिज्ञासा को बढ़ावा देने में उनकी मदद करें, क्योंकि इससे वे अपने आसपास की चीजों के प्रति ज्यादा चौकस हो जाएंगे।
0: जी हाँ,
1: ऐसी चीजों को वे नोटिस करेंगे जिनमें उनकी आमतौर पर दिलचस्पी नहीं होती है या फिर जिन पर वे ध्यान नहीं देते हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इस तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि बच्चों की जिज्ञासा को हमें कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें निरंतर कार्यक्रम सच्चा बचपन में हमारे श्रोता साथियों के साथ यूं ही बनी रहेंगी।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि साथियों बातें बहुत ही अच्छी चल रही है कि किस प्रकार से हम अपने बच्चे को जिज्ञासा कौशल सिखा सकते हैं, इसी के साथ ही हम जैसा कि गीत से पहले भी कुछ ऐसे सुझावों को जान रहे थे जो बच्चों के लिए जरूरी है, अब यही अंजलि जी बात करते हैं कि स्वतंत्र खेलने की अनुमति हमें बच्चों को देनी है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को किसी समस्या का समाधान निकालना चुनौतीपूर्ण लगता है
1: जी,
0: तो ये आपको चिंतित कर सकता है। हालांकि जल्दबाजी में आकर उसे हल न करें, ये देखना जरूरी है कि बच्चा कर क्या रहा है। हालांकि उसे धक्का न दे, मार्गदर्शन न दे या उसे यह न बताए कि ये ऐसे किया जा सकता है। बच्चों में अधिक जिज्ञासा पैदा करने, आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करने और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने के लिए हमें स्वतंत्र खेल की अनुमति बच्चों को देनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ उन्हें गलतियां करने देना है। श्रोता साथियों, गलतियों के लिए जगह बनाएं। गलती करने पर अपने बच्चों की आलोचना आपको नहीं करनी है, इसके बजाय कोशिश करनी है कि उनकी आप सराहना करें, उन्हें इससे सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। गलती के बाद हमें बच्चों को चिल्लाना नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों को अधिक जिज्ञासु बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो धीरे धीरे अपने आप ही समझने लग जाए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है।
0: बिल्कुल साथी दोस्तों, ने खोजबीन की भी आजादी आप दे, यानी कि आपका बच्चा उन चीजों की ओर आकर्षित होगा जो उसे पसंद है, उन पर कुछ थोपने के बजाय उन्हें तलाशने दे। जबकि माता पिता की सामान्य प्रवृत्ति ये होती है अंजलि जी कि वह बच्चों को वही करने के लिए मजबूर करते हैं जो सही है।
1: जी हाँ,
0: इससे उन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। साथियों, बहुत ज्यादा सख्त या फिर बहुत ज्यादा सावधान रहना बच्चे की स्वाभाविक रचनात्मकता को बाधित कर सकता है, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि बच्चों को आजादी दे, जो वे चाहते हैं उसे तलाशने उन्हें दें।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ हमें अनुकूल वातावरण बनाना है। श्रोता साथियों, बच्चा हमेशा निरीक्षण, खोज, आत्मसात करता रहता है। उन्हें दिलचस्प खिलौने, चित्र, किताबें, ऐसी चीजें हमें दिखाते रहना है। उनके लिए खोज करने के लिए एक उत्तेजक जगह हमें बनानी है, इससे सकारात्मक रूप से जुड़े रहेंगे और उनकी जिज्ञासा जागृत होती रहेगी।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो सादे खिलौनों की तुलना में कागज के टुकड़े से ज्यादा खुशी से खेलते हैं। इसी तरह उन्हें हमें ऐसे ही खिलौने देने हैं जो उनके लिए दिलचस्प हो और उन गतिविधियों को खोज खोज कर वो अलग अलग चीजें करते रहें।
0: जी हाँ, साथ ही उनके प्रश्नों का भी आपको सही उत्तर देना है। साथियों, हम देखते हैं अंजलि जी की बच्चों की आदत होती है कि वे अक्सर बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं और जबकि वयस्क उन्हें गहराई से जवाब देने की कोशिश करते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता, शायद इसकी जरूरत ही नहीं हो, इसलिए पूछताछ को प्रोत्साहित करते हुए बिना किसी जटिलता के उनके सवालों का आप जवाब दें।
1: जी बिल्कुल।
0: उन्हें अनदेखा न करें या बहुत ज्यादा जानकारी से अभिभूत भी न करें, नहीं तो आप सीखने का मजा खत्म कर देंगे बच्चों का।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ हमें बच्चों की दिनचर्या में चुनौतियों को भी शामिल करना है।
0: जी हाँ।
1: और इसी के साथ हमें दुनिया में उनकी रुचि पैदा करनी है, यानी कि आसपास की चीजों को लेकर जिज्ञासा को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करने हैं और खुले में प्रश्नों को पूछने के लिए भी हमें बच्चों को प्रेरित करना है।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है और उनके साथ यात्रा पर भी जाना है। सीखने को एक मजेदार चीज के रूप में हमें देखने की कोशिश करनी है बच्चों के साथ ही।
0: बिल्कुल।
1: उन्हें पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित हमें करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी। तो श्रोताओं, इस तरीके के कुछ सुझावों को अपना कर आप अपने बच्चे के अंदर जिज्ञासा के कौशल को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो जैसा कि बातें आज के कार्यक्रम में अंजलि जी हमारे दोस्तों से ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख भी रहे हैं कि समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी बिल्कुल।
0: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना यहाँ पर एक और गीत सुन लिया जाए।
1: जी बिल्कुल। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3200001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपने राय सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: नमस्कार साथियों आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि आज जो छोटे प्रयास हम करने वाले हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ी पहचान बनेंगे।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कशिश, जीवन में हर व्यक्ति सफलता, सम्मान और पहचान चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका नाम समाज में आदर के साथ लिया जाए और लोग उसके कार्यों को याद रखे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन ये पहचान अचानक नहीं बनती, ये किसी एक दिन या एक बड़े काम से नहीं बनती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि एक एक बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक दिन हमारी बड़ी सफलता और पहचान बन जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसीलिए श्रोता साथियों कहा गया है कि आज का छोटा प्रयास कल की बड़ी पहचान बन जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना पहले इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: कि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक ही दिन में पूरा नहीं होगा, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए हमें साथियों निरंतर छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। और सबसे पहले तो एक योजना बनानी होगी।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि आज का हर छोटा प्रयास भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों का आधार बनता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज का समय तेजी से बदल रहा है। हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में यदि हम ये सोचे कि हमें एक ही दिन में बड़ी सफलता चाहिए, ये संभव नहीं है श्रोताओं, क्योंकि सफलता एक यात्रा है जो छोटे छोटे कदमों से पूरी होती है। अगर कोई विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, हर दिन कुछ नया सीखता है, तो धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता है और एक दिन वह विद्यार्थी अपनी मेहनत से बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेता है।
0: बिल्कुल,
1: साथियों यही छोटे प्रयास आगे चलकर उसकी पहचान बन जाते हैं। इसीलिए हम अपने आसपास भी ऐसे ही कई उदाहरण देखते हैं जहां लोगों ने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।
0: बिल्कुल,
1: कोई व्यक्ति अगर हर दिन अपने काम को ईमानदारी से करता है कशिश, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, तो समय के साथ उसका अनुभव बढ़ता जाता है।
0: जी हाँ,
1: धीरे धीरे वही अनुभव उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है और एक दिन वही व्यक्ति समाज में सम्मान और पहचान प्राप्त कर लेता है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि आज के युवाओं के सामने अनेक अवसर हैं, लेकिन कई बार वे जल्दी सफलता पाने की इच्छा में धैर्य खो देते हैं।
1: जी हाँ,
0: साथियों वे सोचते हैं कि एक ही प्रयास से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन देखते हैं जागृति जी यहाँ पर कि वास्तविकता ये रहती है कि हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयासों से ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे युवाओं को ये समझना चाहिए कि वे हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। दोस्तों अपनी गलतियों से आप सबक ले और निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हम देखते हैं कि छोटी शुरुआत ही आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बनती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि छोटे प्रयास तभी फलदायी होते हैं जब उनमें निरंतरता और अनुशासन हो। साथियों
1: जी हाँ,
0: देखेंगे कि यदि हम कुछ दिन मेहनत करें और फिर रुक जाएं, तो उसका परिणाम उतना प्रभावी नहीं होता जितना हम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं तब का परिणाम हम देखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति नियमित और अनुशासित रहें। दोस्तों आपके द्वारा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करने की आदत ही आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए अग्रसर करेगी।
1: जी हाँ,
0: और देखते हैं कि ये आदत व्यक्ति के चरित्र को मजबूत भी बनाती है और जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जागृति जी
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि छोटे प्रयासों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वे हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब हम कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास हमें अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि एक एक कदम बढ़ाते हुए हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों जीवन में छोटे प्रयासों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। कई बार कशिश लोग सोचते हैं कि उनके छोटे छोटे प्रयासों का कोई महत्व नहीं है।
0: जी हाँ,
1: वे सोचकर प्रयास करना ही छोड़ देते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये साथियों कि हर छोटा प्रयास भविष्य में बड़ा परिणाम देता है। जैसे कि किसान रोज अपने खेत की देखभाल करता है, समय पर पानी देता है, मेहनत करता है, शुरुआत में खेत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद हम भी देखते हैं कि वही खेत हरी भरी फसल से लहलहाने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: और यही सब उसके रोज के छोटे छोटे प्रयासों का ही परिणाम होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता ही रहता है कि छोटे प्रयासों के परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देते हैं, जिससे श्रोता साथियों हमारे अंदर निराशा पैदा हो जाती है। ऐसे समय में हम हमारे युवा साथियों से कहना चाहेंगे कि उन्हें धैर्य और सकारात्मक सोच का सहारा लेना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि दोस्तों यदि हम विश्वास के साथ अपने प्रयास जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से ही एक दिन उसका परिणाम हमारे सामने आ ही जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: और हम देखते हैं कि इतिहास गवाह है साथियों कि जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रयास नहीं छोड़े, वे आगे चलकर समाज के लिए प्रेरणा बने हैं। जागृति जी, हर बड़ी सफलता के पीछे अनेक छोटे कदम छिपे होते हैं। साथियों देखते हैं कि एक लेखक रोज अपनी पंक्तियों को लिखकर ही एक दिन महान पुस्तक का निर्माण करता है।
1: बिल्कुल,
0: एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करके ही विश्व स्तर पर पहचान बनाता है। इसी तरह एक विद्यार्थी रोज पढ़ाई कर और मेहनत से ही अपने जीवन और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमारे युवा साथियों को ये समझना चाहिए कि छोटे प्रयास ही बड़े सपनों को साकार करने का मार्ग बनाते हैं।
1: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बातें तो कर रहे हैं, तो ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज का छोटा प्रयास कल की बड़ी पहचान बन जाता है, इसी के साथ जैसे कि साथियों आपको बताना चाहेंगे कि आज के युवाओं के लिए बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कई युवा जल्दी सफलता पाने की इच्छा रखते हैं कशिश, और जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता है तो वे निराश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन साथियों, आपको समझना होगा कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे लंबे समय तक किए गए छोटे छोटे प्रयास होते हैं। अगर युवा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करे, अपने कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहें, तो निश्चित ही एक दिन वे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां भी आती है, ऐसे समय में छोटे प्रयास ही हमें संभालते हैं। अगर हम एक एक कदम आगे बढ़ाते रहें तो धीरे धीरे कठिनाइयां भी कम होने लगती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यही छोटे प्रयास हमें मजबूत बनाते हैं और हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बताएं हमारे साथियों को तो छोटे प्रयासों का सबसे बड़ा आधार समय का सही उपयोग भी है। दोस्तों, जो युवा अपने समय को व्यर्थ गतिविधियों में नष्ट करने के बजाय उससे सीखने, पढ़ने और कौशल विकसित करने में लगाते हैं, वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, समय का हर छोटा सा निवेश भविष्य में बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसी के साथ ही जब व्यक्ति छोटे छोटे लक्ष्य तय करके उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर होता है जागृति जी, तो उसके भीतर से आत्मविश्वास उसका बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: और यही आत्मविश्वास हम देखते हैं कि आगे चलकर उसे बड़े और कठिन कार्य करने की भी शक्ति देता है।
0: जी हाँ।
1: इस प्रकार साथियों, छोटे प्रयास केवल सफलता ही नहीं बल्कि मजबूत व्यक्तित्व की नींव भी बन जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि हर प्रयास के साथ व्यक्ति को नया अनुभव मिलता है, चाहे वह प्रयास सफल हो या असफल, दोनों ही परिस्थितियों में जागृति जी व्यक्ति कुछ न कुछ नया सीखता है। और यही अनुभव आगे के निर्णयों को बेहतर बनाता है, जिससे जीवन की राह और स्पष्ट हो जाती है।
0: जी हाँ, क्योंकि हमें समझना होगा श्रोताओं की पहचान केवल बड़े पद या धन से नहीं मिलती, असली पहचान हमारे कर्मों से बनती है। और जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है,
1: बिल्कुल,
0: वही समाज में सम्मान और विश्वास प्राप्त करता है। इसीलिए हमें हर काम को पूरी लगन से करना होगा, मेहनत के साथ करना होगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो श्रोताओं, क्योंकि समय भी छोटे प्रयासों के महत्व को समझाता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम रोज अपने समय का सही उपयोग करेंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर हम आज के छोटे प्रयासों को टालते रहेंगे तो भविष्य में हमें पछतावा ही मिलेगा।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि आज का हर छोटा प्रयास भविष्य की नींव है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ अगर बात करें तो साथियों, छोटे प्रयास हमारे मानसिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं, क्योंकि जागृति जी, जब कोई युवा बार बार प्रयास करता है तो वह चुनौतियों का सामना करना सीख जाता है। इससे जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी उसे हिम्मत मिलती है, और कह सकते हैं कि लगातार प्रयास करते रहने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा स्पष्ट होने लगती है।
0: जी हाँ।
1: इससे वह यह समझ पाता है साथियों कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस प्रकार अपने सपनों को साकार करना है। क्योंकि दोस्तों, आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि छोटे प्रयास कभी छोटे नहीं होते, वे धीरे धीरे सपनों को आकार देते हैं, और एक दिन वही आपके द्वारा किए गए छोटे प्रयास व्यक्ति की पहचान, सम्मान और सफलता का आधार बन जाते हैं जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, तो हम कह सकते हैं कि जीवन में कोई भी सफलता अचानक नहीं मिलती, ये लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है श्रोताओं। इसीलिए हमें अपने हर छोटे प्रयास को महत्व देना होगा और निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। जब हम आज मेहनत, धैर्य और लगन के साथ छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो वही कदम आगे चलकर हमारी पहचान बनते हैं, और यही प्रयास हमें भीड़ से अलग करते हैं कशिश, और हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमने ढेर सारी बातें की कि आज के हमारे किए गए छोटे प्रयास हमारे कल की सबसे बड़ी पहचान बन सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें हमारे युवा साथियों को जरूर पसंद आई होंगी, क्योंकि अब देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवा साथियों को एक और गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं।
0: बिल्कुल।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन चला डाला।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है कि ईंधन संकट के दौर में सौर क्रांति से बदलती तस्वीर को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां ऊर्जा की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के विस्तार ने ऊर्जा की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोताओं, दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल, कोयला और प्राकृतिक गैस पारंपरिक ईंधनों के भंडार तेजी से समाप्त हो रहे हैं, और यही कारण है अंजलि कि आज ईंधन संकट पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे कठिन समय में सौर ऊर्जा एक नई उम्मीद बनकर उभरी है जिसने ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। और ये सौर क्रांति न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रही है बल्कि गांवों, शहरों और आम लोगों के जीवन की तस्वीर भी बदल रही है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहिएगा श्रोता साथियों, कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है ईंधन संकट के दौर में सौर क्रांति की बदलती तस्वीर को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, जैसा कि कहा गया है कि सूरज की किरणों को अपनाएंगे तो ईंधन संकट से देश बचा पाएंगे, कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि सौर ऊर्जा प्रकृति द्वारा दिया गया ऐसा उपहार है जो कभी समाप्त नहीं होता। हम देखते हैं कि सूरज हर दिन हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि इस ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऊर्जा का स्थायी स्रोत बन सकता है। पहले हम देखते हैं कि केवल पेट्रोल, डीजल और बिजली पर ही लोग निर्भर थे, लेकिन अब धीरे धीरे सौर ऊर्जा की ओर कदम भी बढ़ा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: घरों की छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं, खेतों में सौर पंप लगाए जा रहे हैं और सड़कें भी सौर लाइटों से रोशन हो रही है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज दुनिया एक ऐसे दौर में जी रही है जहां ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल, कोयला और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कहीं तेल के भंडार कम हो रहे हैं तो कहीं प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: गांव हो या शहर, हर जगह बिजली और ईंधन की समस्या लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण उभरती है, सौर ऊर्जा।
0: जी हाँ।
1: यानी कि सूरज की रोशनी से बनने वाली ऊर्जा। आज सौर क्रांति केवल बिजली बनाने का तरीका नहीं रह गई, बल्कि ये गांवों की तस्वीर बदलने का आंदोलन बनती जा रही है। जागृति जी, आज कार्यक्रम में हम यही जान रहे हैं कि ईंधन संकट क्या है। श्रोता साथियों, कई वर्षों से पूरी दुनिया पेट्रोल, डीजल, कोयला और गैस जैसे ईंधनों पर निर्भर रही है। कारें चलानी हो, कारखाने चलाने हो, बिजली बनानी हो या खाना पकाना हो, हर जगह इन्हीं ईंधनों का प्रयोग होता है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। हम देख पा रहे हैं जागृति जी कि धीरे धीरे प्राकृतिक ईंधन के भंडार कम होते जा रहे हैं।
0: जी हाँ।
1: दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ रही है और जरूरतें भी बढ़ रही हैं, जिसका परिणाम ये हुआ है कि पेट्रोल डीजल महंगे होते गए हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर आम परिवार की पहुंच से दूर होने लगे
0: जी
1: हैं।
0: हाँ।
1: और प्रदूषण ने वातावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है।
0: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि ईंधन संकट का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन है। जैसे कि पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन लाखों वर्षों में बनते हैं, लेकिन हम मनुष्य उन्हें बहुत तेजी से समाप्त कर रहे हैं। वाहनों की संख्या बढ़ने से ईंधन की खपत भी लगातार बढ़ रही है।
1: जी जी।
0: इसके कारण महंगाई भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवहन का खर्च बढ़ने से हर वस्तु महंगी हो जाती है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा लोगों को राहत देने का कार्य कर रही है।
1: बिल्कुल।
0: एक बार सोलर पैनल लगाने के बाद कई वर्षों तक कम खर्च में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है श्रोता साथियों। और कहा भी गया है कि ईंधन होगा जब कमजोर, सौर ऊर्जा बनेगी सबसे बड़ा जोर। यानी कि श्रोताओं, भारत जैसे देश में, यानी कि हमारे देश के लिए सौर ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ वर्ष के अधिकांश दिनों में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है। जैसे कि अगर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की बात करें अंजलि, तो कई राज्यों में बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इससे बिजली उत्पादन बढ़ रहा है और कोयले पर निर्भरता कम हो रही है।
1: जी हाँ।
0: गाँव में जहाँ पहले अंधेरा रहता था, वहाँ अब सौर लाइटें रात को उजाला दे रही हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा ने विकास की नई राह खोल ली है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें तो पहले गांव में बिजली कटौती आम बात थी।
0: बिल्कुल।
1: गांव में रात होते ही अंधेरा छा जाता था, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी और किसान सिंचाई के लिए परेशान रहते थे।
0: जी हाँ।
1: लेकिन अब कई गाँव में सोलर लाइट, सोलर पंप और सोलर स्ट्रीट लाइट लगने लगी है। आज गाँव की तस्वीर बदल चुकी है। हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा ने महिलाओं के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन किया है। पहले कई गांवों में महिलाएं लकड़ी इकट्ठा करने जंगल जाती थी, धुएं वाले चूल्हों से उनकी आंखें और फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता था। अब सौर ऊर्जा से सोलर कुकर उपयोग होने लगे हैं, घरों में रोशनी बढ़ी है, सिलाई मशीन और छोटे काम आसान हुए हैं। हम देखते हैं जागृति जी कि कई महिलाओं ने सोलर आधारित छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही थी, बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज हम कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से ईंधन संकट के दौर में सौर क्रांति से बदल रही है तस्वीर। जैसा कि हम ढेर सारी बातों को जान पाए, यही बात करना चाहेंगे कि आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है।
1: बिल्कुल,
0: गर्मी बढ़ रही है, बारिश का समय बदल रहा है, जल संकट गहरा रहा है। इन समस्याओं का बड़ा कारण प्रदूषण है।
1: जी हाँ,
0: कोयला और पेट्रोल डीजल जलने से वातावरण में जहरीली गैसें फैलती हैं। लेकिन सौर ऊर्जा प्रकृति के अनुकूल है। यह हवा को प्रदूषित नहीं करती, धुआं नहीं फैलाती और धरती को सुरक्षित रखने में मदद करती है। अगर अधिक लोग सौर ऊर्जा अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल पाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि सौर क्रांति केवल बिजली तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रोजगार के नए अवसर भी दे रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज हजारों युवाओं सोलर टेक्नीशियन, इंजीनियर और व्यवसायी बन रहे हैं। सोलर पैनल निर्माण, इंस्टॉलेशन और मरम्मत जैसे क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ रहा है। इससे बेरोजगारी कम करने में भी सहायता मिल रही है। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा अब खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा से जुड़ा कार्य करके अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: किसानों के जीवन में भी सौर क्रांति बड़ा परिवर्तन ला रही है। पहले किसान डीजल पंपों से सिंचाई करते थे अंजलि, जिसे खर्च पड़ता था, लेकिन अब सौर पंपों के माध्यम से बिना ईंधन खर्च के खेतों में सिंचाई हो रही है। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है और खेती अधिक लाभकारी भी बन रही है।
0: जी हाँ,
1: कई किसान अतिरिक्त बिजली बेचकर भी आय प्राप्त कर रहे हैं। तो श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है।
0: जी जी,
1: पेट्रोल डीजल और कोयले के उपयोग से प्रदूषण फैलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ती है। लेकिन अंजलि, सौर ऊर्जा स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त है। ये न धुआं छोड़ती है, न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, और यदि अधिक से अधिक लोग सौर ऊर्जा अपनाएंगे तो पृथ्वी को प्रदूषण से बचाया जा सकता है।
0: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। इसी के साथ श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर हर परिवार बिजली बचाएगा, सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी लेगा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझेगा, तो हमारा गांव, हमारा समाज और हमारा देश मजबूत बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: सूरज हर दिन हमें ऊर्जा देता है, जरूरत है तो बस उसे सही दिशा में उपयोग करने की। ईंधन संकट ने जागृति जी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के भरोसे भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता।
1: जी हाँ,
0: आज जरूरत ऐसी सोच की है जो विकास के साथ प्रकृति का संतुलन भी बनाए रखे। सौर क्रांति इसी नई सोच का प्रतीक बनकर उभर रही है। यह केवल बिजली पैदा करने की तकनीक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, बचत, स्वच्छ पर्यावरण, ग्रामीण विकास का नया रास्ता है। जिस गांव में कभी अंधेरा और संसाधनों की कमी थी, वहां अब सोलर ऊर्जा नई उम्मीद जगा रही है।
1: जी हाँ,
0: किसान आत्मविश्वास के साथ खेती कर रहे हैं, महिलाएं छोटे रोजगार शुरू कर रही हैं, बच्चे बेहतर रोशनी में पढ़ पा रहे हैं और युवा नए रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: सबसे बड़ी बात यह है जागृति जी कि सौर ऊर्जा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति से लड़कर नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर ही स्थायी विकास संभव है। आज अगर हम सूरज की शक्ति को समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को ऊर्जा संकट, प्रदूषण और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से काफी हद तक बचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, दुनिया जिस ईंधन संकट से जूझ रही है वो केवल ऊर्जा की कमी नहीं, बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी चेतावनी भी है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम पेट्रोल डीजल और कोयले पर पूरी तरह निर्भर रहे तो भविष्य अंधकारमय हो सकता है। लेकिन सौर ऊर्जा ने साबित कर दिया है कि प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान मौजूद है।
0: बिल्कुल,
1: सूरज की हर किरण केवल रोशनी नहीं लाती अंजलि, बल्कि आत्मनिर्भरता, विकास और सुरक्षित भविष्य का संदेश भी देती है।
0: जी जी,
1: श्रोताओं, सौर क्रांति ने गांवों में उजाला पहुंचाया है, किसानों को राहत दी है, युवाओं को रोजगार दिया है और पर्यावरण को नई सांस भी दी है। ये क्रांति हमें सिखाती है अंजलि कि यदि सोच बदली जाए तो देश की तस्वीरें भी आराम से बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज आवश्यकता केवल तकनीक की नहीं श्रोताओं, बल्कि जागरूकता और जिम्मेदारी की भी है। जब हर घर की छत पर सोलर पैनल चमकेगा, जब हर युवा ऊर्जा बचत का संदेश देगा और जब हर नागरिक प्रकृति का सम्मान करेगा, तभी भारत सच्चे अर्थों में ऊर्जा संपन्न और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकता है श्रोताओं।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें ऐसा भारत बनाना है जहां आने वाली पीढ़ियां धुएं और प्रदूषण में नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा और उज्जवल रोशनी में सांस ले। क्योंकि अंजलि, भविष्य उसी का सुरक्षित होगा जो आज सूरज की शक्ति को समझेगा। कहा गया है श्रोता साथियों कि कोयले का धुआं एक दिन मिट जाएगा, पेट्रोल का भंडार भी ढकर जाएगा, लेकिन सूरज हर सुबह यही कहेगा, अगर हौसला हो बदलाव का तो उजाला कभी खत्म नहीं होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि सूरज की रोशनी घर घर हमें लाना है, हर गांव को हमें आत्मनिर्भर बनाना है स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं हम, मिलकर नया भारत सजाएं हम।
1: जी हाँ,
0: इन्हीं पंक्तियों के साथ अब हम कार्यक्रम सच्चा स्वाद से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में जो भी हमारी बातचीत रही है श्रोता साथियों के साथ, वो उनको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है। आज तकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनकी घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि दोस्तों जब भी हम कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तो हमारी आपसे बातें रहती है कुछ नए स्वास्थ्यप्रद विषयों को लेकर।
2: बिल्कुल,
1: तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि इस गर्मियों के मौसम में जो मधुमेह रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकते हैं।
2: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मियों का जो मौसम है वो अपने साथ तेज धूप, लू, पसीना, शरीर में पानी की कमी, कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन श्रोता साथियों, जिन लोगों को मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी होती है उनके लिए यह मौसम जो है वो और भी ज्यादा सावधानी मांगता है।
1: बिल्कुल,
2: थोड़ी सी लापरवाही के कारण हम देखते हैं कि कमजोरी, चक्कर, शुगर बढ़ना या घटना, पैरों में घाव, डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि मधुमेह रोगी गर्मियों में किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या खाएं, क्या न खाएं, कितना पानी पिएं, धूप से कैसे बचें, पैरों की देखभाल क्यों जरूरी है और परिवार उनकी कैसे मदद कर सकता है।
1: जी हाँ,
2: तो बातें तो ढेर सारी कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम के पहले इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मधुमेह रोगी गर्मियों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी और कशिश, हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम मधुमेह रोगियों के लिए विशेष सावधानी का समय होता है।
1: बिल्कुल,
0: तेज धूप, बढ़ता तापमान, शरीर में पानी की कमी, अत्यधिक पसीना और थकान जैसी समस्या रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकती है। गर्मी के मौसम में शरीर जल्दी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है।
2: बिल्कुल,
0: जिसमें हम देखते हैं कि मधुमेह रोगियों की स्थिति है वो गंभीर हो सकती है। इसीलिए श्रोता साथियों, आवश्यकता है कि वे गर्मियों में अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें।
2: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, जैसा कि आपने बताया। ऐसे में डायबिटीज के जो मरीज हैं उन्हें वैसे तो हर मौसम में सावधानी रखनी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन श्रोता साथियों, अगर आमतौर पर देखा जाए तो गर्मियों में शरीर में पानी की कमी के कारण मधुमेह रोगियों को कह सकते हैं कि ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अधिक खतरा रहता है, क्योंकि गर्मियों में अधिक पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है।
1: बिल्कुल,
2: जिससे ब्लड शुगर का स्तर जो है बढ़ या घट सकता है। और हम देखते हैं अंजलि जी कि तेज धूप शरीर को जल्दी थका भी देती है।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि आज गांव में भी मधुमेह जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। पहले इसे शहरों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब बदलती जो जीवन शैली है, गलत खान पान, तनाव और शारीरिक मेहनत की कमी के कारण गाँव में भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं।
2: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गर्मी में मधुमेह रोगियों को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। ये क्यों होता है इसके बारे में बात करें तो गर्मी का मौसम जो है वो शरीर से अधिक पसीना निकालता है।
2: बिल्कुल,
1: इससे शरीर में पानी और जरूरी जो खनिज है वो कम हो जाते हैं। मधुमेह रोगी में यह समस्या और तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि उनका शरीर पहले से ही संवेदनशील होता है। गर्मियों में मधुमेह रोगियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि शरीर में पानी की कमी, कमजोरी और चक्कर, शुगर लेवल का अचानक बढ़ना या गिरना, पैरों में संक्रमण, त्वचा संबंधित समस्याएं, अधिक थकान, लू लगना, आंखों में जलन और धुंधलापन। इसलिए श्रोता साथियों, गर्मियों में मधुमेह रोगियों को सामान्य लोगों की तुलना में अधिक सावधानी की जरूरत पड़ती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मधुमेह रोगियों के लिए गर्मियों में सबसे महत्वपूर्ण बात है शरीर में पानी की कमी न होने देना। पानी क्यों जरूरी है इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि पानी शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है।
1: बिल्कुल,
0: यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। साथ ही हम देखते हैं कि रक्त संचार को भी यह सही बनाए रखता है। श्रोता साथियों, रोगियों को दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि अधिक पसीना आए तो पानी की मात्रा और बढ़ा देनी चाहिए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। इससे में श्रोता साथियों, हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल,
2: जैसे कि हमें बहुत ज्यादा मीठे शरबत या फिर कोल्ड ड्रिंक से बचना है। दोस्तों, पैकेट वाले जो पेय पदार्थ होते हैं उनका सेवन हमें कम ही करना है। इसके बजाय हम श्रोता साथियों सादा पानी ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है।
1: बिल्कुल,
2: साथ ही दोस्तों भोजन का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी की डायबिटीज मरीजों के लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और गर्मियों में हल्का और पौष्टिक भोजन करना उनके लिए काफी जरूरी है। ऐसे में वे अपने आहार में हरी सब्जियां, दही और छाछ, साथ ही खीरा ककड़ी जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें शामिल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें कि किन चीजों से उन्हें दूरी बनाकर रखनी है, तो श्रोता साथियों, ज्यादा मीठा हमें नहीं खाना है, तली हुई चीजें हमें नहीं खानी है, फास्ट फूड से हमें दूरी बनाकर रखनी है, बहुत ज्यादा नमक का सेवन हमें नहीं करना है।
2: बिल्कुल,
1: आइसक्रीम और अधिक मीठे पेय जो होते हैं वो हमें नहीं खाने हैं। अधिक आम और अंगूर जैसे मीठे फल का भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। श्रोता साथियों, ध्यान रखें कि स्वाद के लिए खाया गया गलत भोजन शरीर को नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं।
2: बिल्कुल,
0: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल
2: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे कि किस तरीके से मधुमेह जो रोगी हैं वो गर्मियों में अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना। यही बात करी कि समय पर भोजन करना क्यों जरूरी है। श्रोता साथियों, बहुत से लोग गर्मी में भूख कम लगने के कारण भोजन छोड़ देते हैं, लेकिन मधुमेह रोगियों के लिए ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। यदि समय पर भोजन नहीं किया जाए तो शुगर अचानक कम हो सकती है, इससे चक्कर, पसीना, घबराहट और कमजोरी आती है। इसलिए समय पर भोजन करें, लंबे समय तक पेट को खाली न रखें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार खाएं। दवा और भोजन का समय हमें नियमित रखना है। इसी के साथ श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि गर्मी की जो तेज धूप होती है दोपहर की, उस समय मधुमेह रोगियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप बहुत ज्यादा होती है, उस समय हमें बाहर नहीं निकलना है। बाहर जाते समय हमें सिर ढकना है, हल्के और सूती रंग के कपड़े पहनने हैं, छाता या गमछा हमें उपयोग में लेना है और ज्यादा देर तक धूप में काम नहीं करना है।
1: बिल्कुल,
0: गांव में खेतों में काम करने वाले मधुमेह रोगियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, उन्हें बीच बीच में आराम जरूर करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम बताना चाहेंगे कि उन्हें पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए। नींद की कमी से ब्लड शुगर है वो बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, अच्छी नींद के हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जिससे कि हमें मानसिक शांति मिलती है, शरीर को आराम मिलता है, हमारे हार्मोन है वो भी संतुलित रहते हैं। श्रोता साथियों, नींद सुधारने के लिए आप कुछ उपाय हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आप समय पर सो सकते हैं, मोबाइल का कम उपयोग कर सकते हैं और शांत वातावरण में सोने से हमारी नींद भी अच्छी होती है और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।
2: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो उन्हें नियमित रूप से अपने शुगर की जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों गर्मी में शरीर की स्थिति जल्दी बदल सकती है, इसलिए ब्लड शुगर की नियमित जांच बहुत जरूरी है। यदि अंजलि जी मरीज को कमजोरी, अधिक प्यास, चक्कर या फिर पसीना महसूस हो रहा है तो तुरंत शुगर की जांच करवानी होती है।
1: जी हाँ,
2: या फिर श्रोता साथियों, आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार उनके परामर्श को भी समझ सकते हैं और उनके द्वारा बताए गए जो भी खाद्य पदार्थ है उनका सेवन कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
2: अब यहीं अगर बात करें पैरों की देखभाल की तो हम देखते हैं कि मधुमेह मरीजों के पैरों में संक्रमण बहुत जल्दी हो जाता है।
1: जी जी,
2: गर्मियों में धूल, पसीना और गर्म जमीन पैरों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए मरीजों को नंगे पैर नहीं चलना चाहिए।
0: जी हाँ,
2: रोज अपने पैरों को साफ करना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों, मुलायम और आरामदायक चप्पल भी आप पहने
0: जी,
2: और अगर पैरों में घाव या फिर फफोले होते हैं तो तुरंत इसका इलाज करवाएं।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ श्रोता साथियों, मधुमेह रोगियों के लिए व्यायाम जरूरी होता है,

0: लेकिन गर्मी में सही समय चुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें सुबह जल्दी या शाम को टहलना है, हल्का योग करना है, प्राणायाम करना है और ज्यादा गर्मी में भारी व्यायाम नहीं करना है। व्यायाम शरीर को सक्रिय रखता है और शुगर नियंत्रण करने में भी मदद करता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि बुजुर्ग मधुमेह रोगियों का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गांव में बहुत से बुजुर्ग मधुमेह से पीड़ित हैं, गर्मियों में उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। उसके लिए परिवार के जो लोग हैं उन्हें समय पर पानी देना है, दवा याद दिलानी है, ज्यादा धूप में जाने नहीं देना है, हल्का भोजन देना है और कमजोरी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। बुजुर्ग कई बार अपनी तकलीफ बताने में हिचकिचाते हैं, इसलिए परिवार को खुद ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ श्रोता साथियों आजकल गलत खानपान और मोबाइल की आदत के कारण बच्चे और युवाओं में भी मधुमेह बढ़ रहा है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे ज्यादा ठंडे पेय पीते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, शारीरिक गतिविधियां कम करते हैं, इसलिए परिवार को बच्चों के खान पान की आदतों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि मधुमेह एक गंभीर लेकिन नियंत्रित की जाने वाली बीमारी है। गर्मियों में यह और अधिक सावधानी मांग सकती है।
2: बिल्कुल,
1: यदि मधुमेह रोगी अपने भोजन, पानी, व्यायाम, दवा और दिनचर्या का सही ध्यान रखे कशिश, तो वे स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: गर्मी के मौसम में छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ी समस्या का कारण बन सकती है साथियों। इसीलिए सतर्क रहना हमारे लिए और अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
2: बिल्कुल,
1: साथ ही अंजलि जी और कशिश हम देखते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखे, नियमित जाँच करवाए और सकारात्मक सोच को अपनाए तो मधुमेह जैसी बीमारी उसके जीवन की गति को रोक सकती है।
2: बिल्कुल,
1: हमें स्वयं भी जागरूक होना चाहिए साथियों और दूसरों के स्वास्थ्य के प्रति भी हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए। सही जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित देखभाल ही मधुमेह रोगियों को स्वस्थ जीवन प्रदान करती है।
2: बिल्कुल
3: बिल्कुल मनीषा, इसी के साथ अगर हमारे साथियों को हम बताएं तो घर की जो पारंपरिक चीजें होती हैं वो भी उनके लिए इस मौसम में फायदेमंद हो सकती है।
2: जी हाँ।
3: जैसे कि अंजलि जी, हमारे ग्रामीण और पारंपरिक जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो गर्मियों में शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जैसे कि मटके का पानी, छाछ, बेल का शरबत, बिना ज्यादा चीनी वाला श्रोता साथियों, और जो नींबू पानी और सत्तू का शरबत होता है वो भी श्रोता साथियों हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। क्योंकि ये जो पेय पदार्थ होते हैं अंजलि जी, ये शरीर को ठंडक देने में सहायक होते हैं।
2: बिल्कुल,
3: लेकिन मधुमेह रोगियों के लिए मात्रा और मिठास का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।
0: जी हाँ कशिश, हम कार्यक्रम के अंत में श्रोता साथियों से यही कहना चाहेंगे कि गर्मियों का मौसम मधुमेह रोगियों के लिए चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इस मौसम को सुरक्षित बनाया जा सकता है।
2: बिल्कुल,
0: पर्याप्त पानी, संतुलित भोजन, नियमित जाँच, धूप से बचाव और मानसिक शांति, ये सभी बातें मधुमेह रोगियों के लिए बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, हमें यह समझना होगा कि बीमारी से डरने की नहीं बल्कि समझदारी से उसका सामना करने की जरूरत है।
2: बिल्कुल,
0: यदि गांव-गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तो लोग अधिक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी पाएंगे।
2: जी हाँ।
0: अपने शरीर की छोटी छोटी जरूरतों को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। समय पर सावधानी अपना कर श्रोता साथियों हम बड़ी बीमारियों और परेशानियों से बच सकते हैं। इस गर्मी में खुद भी जागरूक हमें बनना है और दूसरों को भी हमें जागरूक करना होगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दी।
2: जी बिल्कुल हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही मधुमेह रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
0: और आपके अपने दोस्त कशिश पारशर को
3: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम रोजाना कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर एक नए विषय के साथ हाजिर होते हैं, तो आज भी कार्यक्रम में एक नए विषय को लेकर मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय को लेकर कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं, वो हर उस इंसान के दिल से जुड़ा हुआ है जिसने कभी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखा होगा। जी हाँ साथियों, विषय है सफल लोग किस तरह सोचते हैं। दोस्तों, अक्सर हम किसी सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं, इनकी किस्मत कितनी अच्छी थी, इनके पास मौके थे, इनके पास पैसा था, इनके पास सहारा था। लेकिन साथियों, सच तो यह है कि सफलता सबसे पहले इंसान के दिमाग में जन्म लेती है, फिर सोच बदलती है, फिर आदतें बदलती हैं और फिर जिंदगी ही बदल जाती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर मेरी आपसे ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में दोस्तों, फिर हमारी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसे कि दोस्तों, विषय के बारे में मैं आपको गीत से पहले बता चुकी हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि सफल लोग किस तरह सोचते हैं। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि अक्सर हम सफल लोगों को देखकर ये कहते हैं कि इसके पास तो पैसा था इसलिए सफल हुआ, इसके पास सहारा था इसलिए सफल हुआ, या फिर इसको तो मौके बहुत सारे मिले थे। लेकिन दोस्तों, सफलता किसी इंसान की किस्मत को देखकर, सहारे को देखकर या फिर पैसे को देखकर नहीं आती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि सफल लोग हमसे अलग नहीं होते, उनके पास भी दिन के वही 24 घंटे होते हैं, वही मुश्किलें होती हैं और वही संघर्ष होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का होता है साथियों कि वे परिस्थितियों को एक अलग तरीके से देखते हैं, या फिर कहूँ कि वो अपनी परिस्थितियों को देखने का तरीका ही बदल लेते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सफल लोग आखिर किस तरह सोचते हैं, किस तरीके की आदतें अपनाते हैं और मुश्किल समय में वे खुद को कैसे संभालते हैं, साथ ही क्यों उनकी सोच भीड़ से अलग होती है। साथियों, तो अब यही जानते हैं साथियों कि सफल लोग समस्याओं से नहीं समाधान से जुड़ते हैं। आपको बताऊं दोस्तों, तो जीवन में परेशानी हर किसी के पास है। किसी के पास पैसों की समस्या है, किसी के पास समय की कमी है, किसी के पास अवसरों की, तो किसी के पास आत्मविश्वास की। लेकिन दोस्तों, सफल लोग हर समय ये नहीं कहते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वे ये सोचते हैं कि अब इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, और यही सोच श्रोता साथियों उन्हें आगे बढ़ाती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का काम बंद हो गया है, एक इंसान बैठकर रोता रहेगा कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन सफल सोच वाला इंसान कहेगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अब मुझे कुछ नया रास्ता खोजना होगा। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि सफल लोग समस्या को अंत नहीं मानते, बल्कि एक नई शुरुआत करने का अवसर मानते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, सफल लोग

असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे कहते हैं कि मैं हारा जरूर हूँ, लेकिन खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं फिर से कोशिश करूँगा। यही सोच श्रोता साथियों उन्हें दोबारा खड़ी करती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इस कार्यक्रम को सुन रहे युवा साथियों, आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से कुछ नहीं सीखना जरूर गलत है। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं साथियों एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में, और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, सफल लोगों की पहचान आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कर रहे हैं और वे सफल होने के लिए किस तरीके की सोच रखते हैं ये भी हम जान रहे हैं। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि सफल लोग समस्याओं से नहीं डरते बल्कि समाधान से जुड़ते हैं। सफल लोग असफलता से भी नहीं डरते हैं। अब यहीं अगर आपको बताएं श्रोता साथियों, तो सफल लोग जो होते हैं वो बड़े सपने देखने से भी नहीं डरते। यानी कि हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए छोटा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्रोता साथियों, सफल लोग दूसरों की हंसी से नहीं डरते क्योंकि वे ये जानते हैं कि लोग सफल होने पर भी उनका मजाक उड़ाएंगे और असफल होने पर भी उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सफल लोग ये भी जानते हैं कि जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन वही लोग तालियां भी बजाएंगे। साथियों, सफल लोग अपनी परिस्थितियों से बड़े सपने देखते हैं। यानी कि गरीबी हो सकती है, संसाधन कम हो सकते हैं, मदद करने वाला कोई नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों, अगर सोच बड़ी है तो इंसान रास्ता बना ही लेता है, ऐसी सोच वे रखते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि समय दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। ऐसे में सफल लोग समय को खर्च नहीं करते बल्कि समय का निवेश करते हैं। जब बाकी लोग दोस्तों सिर्फ शिकायतों में समय बिताते हैं, तब सफल लोग सीखने में, मेहनत करने में और खुद को बेहतर बनाने में समय लगाते हैं। इसी कारण से धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगती है और वे आगे ही बढ़ते जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, सफल लोग कभी ये नहीं सोचते कि अब मुझे सब कुछ आ गया है। वे हमेशा सीखते रहते हैं नई बातें, नए अनुभव और नई तकनीक। वे खुद को लगातार श्रोता साथियों बेहतर बनाते रहते हैं क्योंकि वे ये जानते हैं कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी तरक्की भी रुक जाती है। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगी कि किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना और अनुभवों से सीखना, ये सब सफलता की सीढ़ियां हैं। और इस बात को सफल लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि जब पूरी दुनिया आपको कमजोर समझती है, तब भी श्रोता साथियों, अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो यही भरोसा आपको जीत तक ले जाएगा। सफल लोग हर समय दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करते बल्कि वे अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। कई बार रास्ता मुश्किल होता है साथियों, कोई साथ हमारा नहीं देता है, लोग बातें भी बनाते हैं, लेकिन सफल लोग अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाते क्योंकि वे जानते हैं कि अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो दुनिया क्यों ही करेगी। इसलिए श्रोता साथियों, सफल होने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। तो साथियों, कहना चाहूंगी कि सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस अलग तरीके से सोचते हैं। वे हार में भी सीख देखते हैं, समस्या में भी अवसर को देखते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर दोस्तों हम भी अपनी सोच बदल लें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। याद रखिए, सफलता पहले सोच में आती है, फिर जीवन में। इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। अंत में आपसे यही कहूंगी कि अपने सपनों को छोटा मत होने दीजिए, मेहनत करिए, सीखते रहिए और उड़ान भरते रहिए, क्योंकि दोस्तों, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ साथियों, इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। जाते जाते आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही और गीत संगीत रहे वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी मेरी आपसे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
0: होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
1: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
2: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी सांस फूलना ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: विशेष आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि हम अपने भीतर एक नायक रचने की तैयारी कैसे करें।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि जब हम नायक शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में किसी महान व्यक्ति, योद्धा, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और समाज सुधारक की छवि उभरती है। हम सोचते हैं कि नायक वे होते हैं जो इंसान रचते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं या दुनिया को बदल देते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि हर व्यक्ति के भीतर भी एक नायक छुपा होता है? एक ऐसा नायक जो कठिनाइयों से लड़ सकता है, हार के बाद फिर खड़ा हो सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है और अपने जीवन को बेहतर दिशा में दे सकता है।
0: जी हाँ,
1: आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे कि हम अपने भीतर एक नायक को रचने की तैयारी कैसे करें और इसके लिए हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को पहले यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमें अपने भीतर भी एक नायक रचने की तैयारी करनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: साथियों, जीवन की राह में हम अक्सर नायकों की कहानियां सुनते हैं अंजलि जी, कभी इतिहास की वीर गाथाएं तो हमें प्रेरित करती है, तो कभी फिल्मों के पात्र हमें प्रभावित करते हैं, तो कभी किसी खिलाड़ी, वैज्ञानिक, शिक्षक या फिर समाज सेवी का संघर्ष हमें आश्चर्यचकित कर देता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, हम उनकी उपलब्धियों को तो जरूर देखते हैं और मन ही मन ये सोचते हैं कि काश हम भी उनके जैसे बन पाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या कभी हमने ये विचार किया कि नायक बनने के लिए किसी विशेष जन्म, असाधारण शक्ति या फिर चमत्कारी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई तो ये है अंजलि जी कि हर व्यक्ति के भीतर एक नायक छिपा हुआ होता है, बस आवश्यकता इस चीज की होती है कि केवल उसे हमें पहचानना है, तराशना है और जागृत करने की कोशिश करनी है।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति नायक बनकर पैदा नहीं होता। हर नायक कभी न कभी एक साधारण इंसान ही था।
0: जी,
1: उस

0: परिस्थितियों से लड़ने का साहस रखना।
1: बिल्कुल,
0: हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ छिपा होता है। हम दिखते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच ये है कि इंसान अपनी क्षमता का बहुत छोटा हिस्सा ही उपयोग कर पाता है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे भीतर साहस भी है, धैर्य भी है, मेहनत करने की ताकत भी है और सपनों को पूरा करने की क्षमता भी है। समस्या नहीं है, ये नहीं है दोस्तों कि हमारे भीतर शक्ति नहीं है, समस्या ये है कि हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर की ताकत को पहचान लेता है, उसी दिन उसके भीतर का नायक जागना शुरू हो जाता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि नायक वह नहीं है जो केवल युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करे, बल्कि नायक वह भी है साथियों जो कठिन परिस्थितियों में हार न माने, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निभाए,
0: बिल्कुल,
1: और जो समाज के लिए कुछ अच्छा करने का साहस रखे। साथियों, जो अपने डर पर विजय प्राप्त कर सके और अपने चरित्र की मजबूती से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सके। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि हमें अपने भीतर भी एक नायक को रचने की तैयारी करनी चाहिए।
0: बिल्कुल
1: साथियों, ये केवल एक विचार नहीं है बल्कि जीवन को बदलने वाला एक संदेश है, क्योंकि जब हम अपने भीतर नायक को जगाने की तैयारी कर रहे होते हैं तब हम केवल स्वयं को नहीं बदलते अंजलि जी, बल्कि हम अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सकारात्मक उदाहरण बनने की तैयारी कर रहे होते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, कोई भी महान कार्य आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है श्रोता साथियों कि हमें सब कुछ आता हो, आत्मविश्वास का अर्थ है कि हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। श्रोता साथियों, जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, यदि वह गिरने से डर जाए तो कभी चल ही नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास जरूरी होता है।
1: बिल्कुल,
0: पर भरोसा रखिए, अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए और यदि विश्वास आपके भीतर के नायक को जन्म देता है। बहुत से लोग इसलिए कशिश आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है।
1: बिल्कुल,
0: इतिहास गवाह है कि सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर ही गुजरता है। हार का मतलब ये नहीं है श्रोता साथियों कि यात्रा समाप्त हो गई है, हार का मतलब केवल इतना है कि अभी और सीखना बाकी है।
1: बिल्कुल,
0: जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वही आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है।
1: जी हाँ।
0: नायक वे नहीं होते हैं श्रोता साथियों जो कभी हारते नहीं, नायक वे होते हैं जो हार कर भी हार नहीं मानते।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हमारी बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है, ये जो बातें हैं वो आगे भी हम करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हम अपने भीतर एक नायक पैदा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, अनुशासन नायक की ही पहचान है। यदि हम अपने भीतर नायक को विकसित करना चाहते हैं तो अनुशासन अपनाना होगा। हर दिन समय पर उठना, अपने काम को जिम्मेदारी से करना, सीखते रहना और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, ये छोटी छोटी बातें ही बड़े बदलाव लाती है। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों की सफलता का रहस्य अनुशासन ही है। कहना चाहेंगे कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुशासन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा नायक केवल ताकतवर नहीं होता, वह ईमानदार भी होता है। वह दूसरों का सम्मान करता है, वह अपने वचनों का पालन करता है। आज समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका चरित्र मजबूत हो।
1: बिल्कुल,
0: पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है।
1: जी हाँ,
0: हम अक्सर सोचते हैं श्रोता साथियों कि नायक वही है जो बड़े काम करे, लेकिन किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना भी नायकत्व है। समाज को बदलने के लिए हमेशा बड़ी शक्तियों की जरूरत नहीं होती है कशिश, कई बार एक छोटा सा अच्छा काम भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकांश लोग नायक शब्द को सुनते ही किसी योद्धा, फिल्म सितारे या फिर प्रसिद्ध व्यक्ति की कल्पना करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन दोस्तों वास्तविक जीवन में नायक की परिभाषा इससे कहीं अधिक ज्यादा है। जैसे कि नायक वह है जो कठिनाइयों से भागता नहीं है, जो सच का साथ देता है, जो असफलता से सीखता है, जो दूसरों की सहायता करता है और अपने मूल्यों पर अडिग रहता है। जैसे कि एक किसान जो सूखे के बावजूद मेहनत करता है।
0: बिल्कुल,
1: एक शिक्षक जो सीमित संसाधनों में भी बच्चों को शिक्षित करना जानता है। एक नर्स जो दिन रात मरीजों की सेवा करती है, और एक माँ जो परिवार के लिए त्याग करती है।
0: जी,
1: अंजलि जी, ये सभी जो है वो अपने अपने जीवन के नायक है। अगर बात करें प्रकृति की, तो हर व्यक्ति के भीतर छिपा होता है एक नायक साथियों।
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति ने किसी को भी केवल साधारण बनने के लिए नहीं बनाया, हर व्यक्ति के पास कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में नेतृत्व क्षमता अधिक होती है, किसी में करुणा की भावना ज्यादा होती है, किसी में साहस होता है तो किसी में धैर्य की भावना होती है, और किसी में रचनात्मकता। अंजलि जी,
0: जी जी
1: साथियों, यहाँ पर समस्या ये नहीं है कि हमारे भीतर नायक नहीं है, समस्या ये है कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं।
0: जी जी
1: अंजलि जी, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि उसके भीतर एक छोटा सा नायक है जो उसे बार बार उठने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल कशिश,
1: साथियों यही भावना बड़े होने पर भी हमारे भीतर मौजूद रहती है। जरूरत बस इस बात की है कि केवल हमें उसे जगाना है।
0: जी हाँ कशिश, आज सोशल मीडिया और दिखावे के दौर में लोग लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी और जैसा बनने की कोशिश करने से बेहतर है श्रोता साथियों कि हम अपने बेहतर स्वरूप को विकसित करें। अपनी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमारे आज के और अभी के स्वरूप से होती है।
1: जी जी,
0: हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश हमको करनी है, यही वास्तविक प्रगति है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, कभी आर्थिक परेशानी होगी, कभी पारिवारिक समस्या होगी, कभी मन निराश होगा, लेकिन याद रखिए कि चुनौतियां हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे इंसान संघर्षों से निखरता है। जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करना सीख लेता है, वही जीवन का सच्चा नायक बनता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हमारे गाँवों और कस्बों के युवाओं में अपार क्षमता है, जरूरत सही दिशा, मेहनत और आत्मविश्वास की है। यदि युवा नशे, आलस्य और निराशा से दूर रहकर शिक्षा, कौशल और सकारात्मक सोच को अपनाएंगे तो वे न केवल अपना बल्कि समाज का भविष्य भी बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: देश का भविष्य किसी एक बड़े नेता के हाथ में नहीं होता, देश का भविष्य करोड़ों जागरूक युवाओं के हाथ में होता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो देखते हैं कि नायक बनने की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। जैसे कि दोस्तों आत्मविश्वास वह नींव है जिस पर महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं कर सकता। अंजलि जी, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ आता हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें ये भरोसा है कि जो हमें नहीं आता है वो हम सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: दोस्तों कई बार युवा इसलिए भी अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इस चीज के पर्याप्त योग्य नहीं है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है दोस्तों कि सफल लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर ही आगे बढ़े हैं। नायक बनने की पहली तैयारी ये है कि आपका खुद पर विश्वास हो कि मैं कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, ये जो भावना है वो आपको अपने भीतर विकसित करनी होगी ताकि आप एक अच्छे नायक बन सके।
0: बिल्कुल कशिश, नायक बनने के लिए किसी विशेष पोशाक, शक्ति या प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं होती। जरूरत होती है साहस की, ईमानदारी की, धैर्य की, अनुशासन की और लगातार आगे बढ़ते रहने की।
1: जी जी।
0: जब कोई व्यक्ति अपने डर पर विजय प्राप्त करता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, दूसरों के लिए उपयोगी बनता है और कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, तब वह अपने भीतर के नायक को जन्म देता है। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल
0: याद रखिए कि दुनिया को बदलने से पहले हमें स्वयं को बदलना होता है। सबसे बड़ी जीत दूसरों में नहीं कशिश, स्वयं पर विजय प्राप्त करने में है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए आज से, अभी से अपने भीतर छिपी संभावनाओं को हमें पहचानना है, अपने सपनों को महत्व देना है, अपनी कमजोरियों को चुनौती देना है, अपने चरित्र को मजबूत बनाना है। हो सकता है कि दुनिया आपको नायक न कहे, लेकिन यदि आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सफल हो जाते हैं तो आप अपने परिवार, अपने समाज और अपने स्वयं के लिए एक सच्चे नायक बन जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नायक बनना कोई कठिन कार्य नहीं है। छोटी छोटी आदतें अपनाकर हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे विषय को लेकर जैसा कि हम कर रहे हैं कि नायक बनने की तैयारी हमें शुरू कर देनी है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ की ओर। जैसा कि कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है
1: जी हाँ।
0: कि हम अपने भीतर ही एक नायक को रचने की तैयारी करें। श्रोता साथियों, एक कहानी के माध्यम से हम आपको ये बात समझाना चाहेंगे कि गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, मेहनती भी था, लेकिन हमेशा एक बात को लेकर परेशान रहता था। उसे लगता था कशिश कि उसके जीवन में कुछ खास नहीं। जब भी वह टीवी पर बड़े नेताओं, खिलाड़ियों और सफल लोगों की कहानी सुनता तो सोचता, काश मैं भी कोई बड़ा नायक बन पाता। धीरे धीरे यह सोच उसके मन में घर करने लगी।
1: जी हाँ।
0: नायक बनने के लिए बहुत बड़ा काम करना जरूरी है, इसलिए वह अक्सर खुद को साधारण और महत्वहीन समझने लगा।
1: बिल्कुल।
0: एक दिन गांव में एक वृद्ध शिक्षक आए। वे कई वर्षों तक अलग अलग जगहों पर पढ़ा चुके थे, अब अपने गांव लौटे थे और अर्जुन ने उनसे पूछा, गुरुजी क्या हर व्यक्ति नायक बन सकता है?
1: बिल्कुल।
0: शिक्षक मुस्कुराए, बोले, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन पहले यह समझना होगा कि नायक होता कौन है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या नायक वही होता है जो प्रसिद्ध हो जाए? शिक्षक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, प्रसिद्धि और नायकत्व में एक ऐसी चीज होती है जो अलग होती है। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। कुछ दिनों बाद शिक्षक उसे गांव के अलग अलग लोगों से मिलने ले गए। सबसे पहले वे एक किसान के पास पहुंचे। उस वर्ष बारिश बहुत कम हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: खेत सूख रहे थे। कई किसान परेशान थे, लेकिन वह किसान रोज सुबह उठकर खेत में जाते और मेहनत करते और एक उपाय खोजते। शिक्षक ने पूछा, इतनी परेशानी में भी हिम्मत कैसे बनाए रखते?

0: हो। किसान बोला, अगर मैं हार मान लूं तो मेरा परिवार भी हार जाएगा, इसलिए कोशिश करना नहीं छोड़ता। आगे बढ़ते हुए शिक्षक बोले, देखा अर्जुन, ये आदमी अपने परिवार के लिए नायक है।
1: जी हाँ।
0: अर्जुन चुप रहा। फिर वे गांव की एक महिला से मिले। उसके पति का कोई कई साल पहले ही निधन हो चुका था। उसने मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया था। आज उसका बेटा शिक्षक बन चुका था और बेटी नर्स। महिला ने कहा, कई बार लगा कि अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन बच्चों का भविष्य देखकर फिर खड़ी हो गई।
1: बिल्कुल।
0: शिक्षक ने अर्जुन से कहा, यह भी एक नायक है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कुछ दिन बाद गांव में अचानक तेज बारिश हुई। एक छोटा बच्चा नाली के पास खेलते खेलते फिसल गया।
1: जी हाँ।
0: आसपास लोग घबरा गए। उसी गांव का एक साधारण मजदूर बिना कुछ सोचे नाले में कूद पड़ा और बच्चे को सुरक्षित बाहर ले आया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन वह मुस्कुराकर बोला, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि नायक बनने के लिए मंच, तालियां और प्रसिद्धि जरूरी नहीं है। नायक वह भी हो सकता है जो सही समय पर सही काम करे।
1: बिल्कुल।
0: समय बीतता गया। एक दिन अर्जुन को शहर में अच्छी नौकरी का अवसर मिला, लेकिन उस समय गांव के बच्चों की पढ़ाई की हालत बहुत खराब थी। स्कूल में शिक्षकों की कमी थी, कई बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे थे। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता केवल अपने बारे में सोचने का था और दूसरा रास्ता था समाज के लिए कुछ करने का।
1: बिल्कुल।
0: उसने कुछ समय गांव में रहने का निर्णय लिया। उसने बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। शाम को गांव के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने लगा। शुरुआत में केवल 5 बच्चे आए, फिर 10, फिर 20। धीरे धीरे संख्या बढ़ गई। कई बच्चों ने पढ़ाई में रुचि लेना शुरू किया। कुछ युवाओं को नौकरी मिली। कई लड़कियों ने आगे बढ़ने का फैसला किया।
1: बिल्कुल।
0: एक दिन गांव में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को सम्मानित किया। मंच पर खड़े होकर अर्जुन को अचानक अपने गुरुजी की बात याद आ गई। नायक वह नहीं जो सबसे आगे दिखाई दे, नायक वह है जो दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते।
1: बिल्कुल।
0: कार्यक्रम के बाद अर्जुन ने अपने गुरुजी के पास जाकर उनसे बोला कि अब मैं समझ गया हूँ कि नायक बनने के लिए दुनिया जितना जरूरी नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए, तो फिर क्या जरूरी है? अर्जुन ने उत्तर दिया, अपने डर पर जीत हासिल करना, अपनी जिम्मेदारी निभाना और दूसरों के जीवन में उम्मीद जगाना।
1: बिल्कुल।
0: गुरुजी की आंखों में खुशी झलक रही थी। उन्होंने कहा, यही वह दिन है जब तुम्हारे भीतर का नायक जन्मा है। सच्चा नायक वह नहीं होता है श्रोता साथियों जिसे पूरी दुनिया पहचानती हो। सच्चा नायक वह है जो कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानता, अपने कर्तव्य और ईमानदारी से उन सारी चीजों को निभाता है।
1: बिल्कुल।
0: अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है और हर दिन भीतर एक नायक छिपा रहता है।
1: जी जी।
0: और जरूरत केवल उसे पहचानने और जागने की होती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ ही दोस्तों, अनुशासन और आत्मसंयम भी नायक के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जैसे कि बिना अनुशासन की कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ऐसे में समय का सदुपयोग, नियमित अध्ययन, स्वस्थ जीवन शैली और निरंतर अभ्यास साथियों हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। अंजलि जी, जो व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, वह जीवन की ढेर सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि एक जो सच्चा नायक होता है, केवल अपने लिए ही नहीं जीता बल्कि दूसरों के हितों का भी वह ध्यान रखता है। सेवा, करुणा और संवेदनशीलता उसके व्यक्तित्व की पहचान होते हैं साथियों।
0: बिल्कुल।
1: देखते हैं कि समाज में अनेक लोग सहायता और सहयोग की उपेक्षा करते हैं। यदि हम किसी दुखी व्यक्ति की मदद करेंगे दोस्तों, किसी जरूरतमंद को सहारा देंगे या समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो हम अपने भीतर मानवता के नायक को विकसित कर रहे होते हैं। और नायक बनने की प्रक्रिया में शिक्षा और ज्ञान भी उतने ही विशेष महत्व रखते हैं। अंजलि जी,
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान रहे हैं। आगे भी ये बातें बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल निपुण।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें अंजलि जी एक अच्छे नायक को पहचानने की चली रही है, तो कहना चाहेंगे दोस्तों कि एक सच्चा नायक केवल अपने लिए नहीं जीता,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि दूसरों के हितों का भी ध्यान रखता है। सेवा, करुणा और संवेदनशीलता उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है
1: जी हाँ।
0: और समाज में भी अनेक लोग सहायता और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि आज के समय में युवाओं के सामने अनेक आकर्षण और चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और तेजी से बदलती जीवन शैली के बीच अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना उनके लिए आसान नहीं है
1: जी हाँ।
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों, हमें अपने आदर्श निर्धारित करने चाहिए और उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हमें दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी मौलिक पहचान बनानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष प्रतिभा तो होती ही है अंजलि जी,
1: जी
0: जिससे पहचान कर विकसित करना ही अपने भीतर नायक रचने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि इंसान का असली परिचय उसकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति उसके व्यवहार से होता है। जब हम अपने भीतर एक नायक को गढ़ने की बात करते हैं तो इसका अर्थ किसी काल्पनिक महानता को प्राप्त करना नहीं, इसका अर्थ अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाना है कि हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें,
0: बिल्कुल
1: अपने मूल्यों पर टिके रह सकें और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सकें। आज का समय हमें लगातार यह संदेश देता है श्रोता साथियों कि सफलता का मतलब दूसरों से आगे निकलना है, लेकिन वास्तव में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा स्वयं को बेहतर बनाने की यात्रा है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है जहां से उसे अपनी वास्तविक शक्ति दिखाई देने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: और यही वह क्षण होता है जहां साधारण व्यक्ति असाधारण बनने की दिशा में कदम बढ़ाता है।
0: जी हां अंजलि जी,
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि नायक बनने की तैयारी किसी एक दिन में पूरी नहीं होती है, या रोज की छोटे छोटे निर्णयों, निरंतर सीखने की इच्छा, जिम्मेदारियों को निभाने की आदत और सकारात्मक सोच से बनती है।
0: बिल्कुल,
1: जब कोई व्यक्ति शिकायत के बजाय समाधान खोजने लगता है, बहानों के बजाय प्रयास करने लगता है और केवल अपने हित के बजाय सामूहिक भलाई के बारे में सोचने लगता है, तब उसके भीतर का नायक आकार लेने लगता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी,
1: समाज को आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है कशिश, जो केवल समस्याओं की चर्चा न करें बल्कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से करें। गांव हो या शहर, परिवार हो या कार्यस्थल, हर जगह ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदारी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत कर सके।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि बड़े परिवर्तन हमेशा कुछ चुनिंदा लोगों से नहीं बल्कि लाखों साधारण लोगों के छोटे छोटे अच्छे कार्यों से जन्म लेते हैं। याद रखिए कि किसी पर्वत को जीत लेने से बड़ी उपलब्धि अपने डर को जीत लेना है, किसी प्रतियोगिता में प्रथम आने से बड़ा सम्मान अपने चरित्र को ऊंचा बनाए रखना है, और दूसरों से प्रशंसा पाने से अधिक मूल्यवान है रात को सोते समय यह संतोष होना कि आज आपने किसी का भला किया है, किसी का हौसला बढ़ाया है और अपने जीवन को कल से थोड़ा बेहतर बनाया है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं सच में श्रोता साथियों की नायक वह नहीं है जो कभी हारता नहीं, बल्कि वह है जो हर हार के बाद फिर से उठ खड़ा होता है।
1: बिल्कुल,
0: संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है साथियों। असफलता हमें निराश करने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सिखाने के लिए आती है, इसलिए हमें कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, नायक जो है वो जन्म से नहीं बनते हैं, हम वे अपने विचारों, कर्मों और संकल्पों से निर्मित होते हैं। जब कोई व्यक्ति अंजलि जी अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर मानवता, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है, तभी उसके भीतर एक सच्चे नायक का उदय होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानिए और एक ऐसे नायक का निर्माण करिए जो स्वयं के साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सके।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, इसलिए हमें अपने जीवन को किसी और की कहानी बनने का इंतजार नहीं करने देना है, अपने जीवन की कहानी हमें स्वयं लिखनी है।
0: बिल्कुल,
1: अपने सपनों को दिशा देना है, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है, अपने कर्मों को सार्थक बनाना है और अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है श्रोता साथियों कि आपकी उपस्थिति से लोगों के जीवन में आशा और प्रेरणा का संचार हो।
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है कि आपका नाम इतिहास की किताबों में न लिखा जाए, लेकिन यदि आपके कारण किसी व्यक्ति का जीवन बेहतर होता है, किसी बच्चे को प्रेरणा मिलती है, किसी परिवार को सहारा मिलता है या समाज में एक सकारात्मक बदलाव आता है तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी।
0: बिल्कुल,
1: यही वह नायक तत्व है जो समाज के साथ और अधिक मूल्यवान होता जाता है। आज यह संकल्प लेना है श्रोता साथियों हमें कि हम परिस्थितियों के भरोसे जीवन नहीं जिएंगे,
0: जी
1: बल्कि
0: हाँ।
1: अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने चरित्र की शक्ति से अपने भीतर एक ऐसे नायक का निर्माण करेंगे जो केवल स्वयं को नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाने की क्षमता रखता हो।
0: बिल्कुल,
1: यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा नेतृत्व है और यही जीवन का सबसे सुंदर उद्देश्य है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं।
1: बिल्कुल,
0: समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हम हमारे साथियों को बता दें।
1: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: नमस्कार।
0: साथी दोस्तों आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम हर रोज कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर आते हैं और ये कार्यक्रम 11 से 1 बजे तक चलता है। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप अपनी फरमाइश गीतों को देने के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए 9460051234। इस नंबर के माध्यम से आप अपना फरमाइश गीतों को वागर रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं श्रोता साथियों, और फरमाइश देने का समय है प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 बज चुकी है, कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है अमृत, गीत के बोल हैं और नहीं कुछ तुमसे कहना। आवाज दी इस गीत को अनुराधा पुडवाल जी ने और मनहर उदास ने। सुनना चाह रहे इस गीत को महानगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर राही, श्रीमती सरिता ग्वानकर, प्रिंस एकांश ग्वानकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता ग्वानकर, सिद्धांत ग्वानकर, अर्जुन ग्वानकर टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से हैं वैशाली शैलिश ग्वानकर, सुमित ग्वानकर, कुमारी ध्वनि ग्वानकर परी। इसी गीत के साथ श्रोता साथियों हमारे और भी श्रोता हैं जो जुड़ रहे हैं। फाजिल का पंजाब खेड़ा से हैं परी, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, ट्वांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा और बी खेड़ा, जीवन से बुक, समस्त खेड़ा परिवार अनुरोध किया है इस गीत के साथ। जाकिर मुलानी, सुमया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, चाचा चाची और पूरा मुलानी परिवार, ये है मुकाम पोस्ट फुलचिंचोली तालुका पंडरपुर से। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत के बोल हैं, कह दो कि तुम, फिल्म का नाम है तेजाब। सुना जा रहे गीत को रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता शिंदे, इशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के अनुरोध करता है इस गीत के। गांव डाकघर निमनाबाद, जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और कौर, कमरजीत कौर। सुना चाह रहे इस गीत को अकोट महाराष्ट्र से बालू पाटिल, सविता पाटिल, नितिन पाटिल, नलिनी पाटिल और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। श्रोता साथी, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। पसंद किया है इस गीत को पोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुनत, जेनेहा जैन, दीपक मयंक मुनत, चैतन आटा, दिलीप से पवार, दीक्षा खुश मुनत। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, कह दो कि तुम मेरी हो।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है रखवाला। गीत की बोल है, मेरे दिल ने जो मांगा। सुना जा रहे इस गीत को ग्राम पंचायत बठिना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली खूबचंद वर्मा,

इसी गीत के साथ दोस्तों जुड़ रहे हैं ग्राम मैजवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े वकील वाल्मीकि धाड़े निनाजी धाड़े स्वप्निल धाड़े अनुरोध करता है इस गीत के। मोहम्मद यासिन हाशमी, मोहम्मद नाजमा बैगम हाशमी, मोहम्मद तौसिफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी नई बस्ती गंज डुडवाना से हैं। अनुरोध करता है दोस्तों इस गीत की ग्रामनगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुनदेव साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा बीबी आराध्य साहू। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख, ग्राम पंचायत कालीगांव से इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। तो आइए साथ ही सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल है मेरे दिल ने जो मांगा, आवाज दी इस गीत को लता मंगेशकर जी ने। तो सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहें कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथ ही जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गीत के बोल हैं गवाह है चांद तारे, फिल्म का नाम है दामिनी। आवाज है इस गीत को कुमार सानू और अलका याग्निक जी ने। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फिजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। अनुरोध करता है इस गीत की नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। पसंद किया है इस गीत को मुगलपुर बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी ने। और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। श्रोता साथियों सुना जा रहा है इस गीत को शादुल शहर जिला आश्रय गंगानगर से राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जैबुनिसा बैगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, बहुत ही प्यारा संगीत सुना, गवाह है चांद तारे, फिल्म का नाम था दामिनी और इस गीत को आवाज दी थी कुमार सानू और अलका याग्निक जी ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई, गीत की बोल है दिल पे तेरा। सुना जा रहे इस गीत को कस्बा अग्रवाल, मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सदीका अली खान, सारिका अली खान। अनुरोध करता है श्रोता साथियों उस गीत की, सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रीतिश, प्रीतिशा संधु और मैक्स। यह गुलाम रोड, हरगोविंद नगर, नवा शहर, पंजाब से। सुना जा रहा है इस गीत को गाजियाबाद से शिशपाल अकेला। अनुरोध किया इस गीत को छुरी छत्तीसगढ़, जिला कोरबा से लक्ष्मण से ठाकुर, सावित्री देव ठाकुर, माला ठाकुर, कमल से ठाकुर, ईश्वर से ठाकुर, मानु शानु, बबन, मनु कान्हा ठाकुर और हरिप्रिया जी। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, श्रीमती मुनीश देवी, जगमोहन से प्रजापत, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से हैं ये, रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं, धमो पाटीदार, नीलेश पाटीदार, ये है राजस्थान बांसवाड़ा देवलिया से। रघुवीर नगर से है दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायब और लड्डू। तो आइए साथ ही सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं दिल पे तेरा।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास है, गीत के बोल हैं, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। फिल्म का नाम है सड़क। सुनना चाह रहे इस गीत को जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोकचंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर समर राज आर्यन, बीबी आरोही, ऐशिका अंजलि, श्वेता वर्मा और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। मंजू का टीला मजनू का टीला से है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। अनुरोध किया है इस गीत क्यों। आर्यनगर कोहरका भिलाई छत्तीसगढ़ से है उत्तम सिंह जंगल, मौरत जंगल, अनिल कुमार जंगल, अजीत कुमार, आयुष जंगल और नंदनी जंगल। धमदा ग्राम सुकरी कला से है अमित जंगल, शकुनी जंगल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगल और अंजलि जंगल। सुनना चाह रहे हैं दोस्तों इस गीत को। खेल बाजार पानी

से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का। इसी गीत के साथ दोस्तों जुड़ रहे हैं नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश जादव, अनिता जादव, आरती पूजा, प्रसाद जादव, सोनल जादव, बीबी सिया जादव, जालना शहर से हैं सोमनाथ जादव, गीता जादव, ओम जादव, सुभाष जादव, संचंदन जादव, एकनाथ जादव, संगीता जादव। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत की बोल है, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है ममता, गीत के बोल हैं रहे ना रहे हम महका करेंगे। सुना जा रहे इस गीत को भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार अनुरोध किया है इस गीत को। दतरेंगी फाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। अजित कसाना, माया देवी ऋतिका और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से हैं। सुना जा रहे इस गीत को सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन छेंडे राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से हैं। और भी दोस्त हैं श्रोता साथियों जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, पटेल नगर मालोद से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू अनुरोध किया है श्रोता साथी इस गीत का। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं रहे ना रहे हम।

साथियों, बहुत ही प्यारा संगीत सुना और अगली फरमाइश हमारे पास आई जनकपुरी सनहानपुर से जोन डिस्क्रिव रोजी पर्ल और विलीज ये सुनना चाह रहे हैं। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। गीत के बोल हैं आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। आवाज़ दी इस गीत को सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं बद्रा ठाकुर पथरिया से हैं मीनू मरावी, लता मरावी, अनुराग मरावी, अभिनव मरावी। पसंद किया इस गीत को ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद अंकल अक्सर हरिद्वार से हैं। ये और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गर्वी, हिमाक्ष। पथरूड से विजय अम्बाडकर, सुनीता अम्बाडकर, अक्षय अम्बाडकर, राधिका अम्बाडकर, ऋषिकेश अम्बाडकर और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। गीत की बोल है आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। फिल्म का नाम है बाल ब्रह्मचारी।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत करती हूं आप सभी का साथियों फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप

सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ रोजाना सोमवार से शनिवार बना रहता है सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस करते हैं साथियों, जैसा कि आज भी ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता जागृति जी के साथ में। और अब आप इसे सुनने वाले हैं आगे मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर के साथ में। तो साथियों, मैं फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ और फरमाइश के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। साथियों, अनुमति चाहूंगी अगली फरमाइश की ओर बढ़ने की। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल, गीत के बोल हैं परदेसिया ये सच है पिया। इस प्यारे से गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। और फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुष श्रीवास, विवेक शिवास, बीबी आशीष श्रीवास छत्तीसगढ़ से है। मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। इसी बीच और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, बक्सर बिहार से सफरुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, सुरित रमेश साहू। बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोनामा दीबा, दानिश अंसारी जी, श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य बक्सर से हैं। सलीमपुर बक्सर से और भी साथी हैं, एस जॉय अंसारी, आसमा खातून अंसारी। दोस्तों, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे उदयन पाल, जहीन पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और समस्त बघेल परिवार सदस्यगण। तो आइए सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ, श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं। गीत के बोल हैं परदेसिया ये सच है पिया। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी, वसीम महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है बॉम्बे, गीत के बोल हैं तू ही रे। फरमाइश करता है, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर विठल सुरेश शर्मा सुरेश प्रदेश से मायरा शिरोसी जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, गंजुडवारा से हैं शमशुल कमर राय, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ से है सोहन जोशी, अर्चना जोशी जी। मॉडल टाउन करनाल से है सुधर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, सुनीता शर्मा जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं जमशेदपुर से हरिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू, पप्पी भाटिया, नवनीत भाटिया जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे फजल का पंजाब से सुभाष गोदरा, विमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदरा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तू ही रे। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे भी चाया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। श्रोता साथी मनोरंजन करना चाहते हैं कुरावली से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों मोहब्बतें। गीत के बोल है चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी कुरावली से अनिल कुमार जी और माया देवी जी, राहुल कुमार वर्मा जी, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फलमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। द्रोणाचार्य बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सिद्धबासी, निखत प्रवीण अबासी, सरफराज सर, सुहान अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों जुड़ रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगादीप थांटी, तीता कुमारी थांडी, प्रियंका प्रशांत, प्रियम वामिका, वाणी थांडी जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं और भी श्रोता साथी हमारे जो पसंद करते हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगे, महेश प्रगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। और भी श्रोता साथी गंजुडवारा से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर खिल्लू परवेश, बेगम इराना ना, नाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है बॉर्डर। गीत के बोल हैं, हमें जब से मोहब्बत हो गई है। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में बेशहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, जयश्री मेहतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टूल, बीपी कुलतेजी। इसी बीच और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो सुनना चाह रहे हैं, कोरबा से हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानो शानो, बब्बन मनो, काना ठाकुर और हरिप्रिया जी। साथी जुड़ रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, प्रराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। नाम बताना चाहूंगी दोस्तों, श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अविका जीविका सानू कुमार, अर्चना कुमार, पुनावले से अजय सोनवाने, करिश्मा अविका, शायशा सोनवाने, विशाखा मंगलकर जी और गणेश अविका जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल है, हमें जब से मोहब्बत हो गई है।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ना चाहूंगी मैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है भवानी नगर पेठन से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बताना चाहूंगी, हम दिल दे चुके सनम। गीत के बोल हैं आंखों की गुस्ताखियां। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे अरुण धोंगड़े, आरती धोंगड़े, भाऊ साहेब धोंगड़े, गंगा सागर धोंगड़े, हर्षवर्धन अशोक धोंगड़े और राशि कार्तिक परी धोंगड़े जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो सुनना चाहते हैं इसी गीत को। नाम बता दूं श्रोता साथियों आपको, सनावत से यूनुस खत्री, सफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। दोस्तों नाम बताना चाहूंगी जुड़ रहे हैं हमारे बीच में जो मनोरंजन इसी गीत के साथ करना चाहते हैं, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिण दले, इश्की दले, जीविका दले, सनिका दले, पुना वाले पुड़े से अजय सोनवाने, करिश्मा अविका सहसा सोनवाने, विशाखा मंगलकर जी। और भी दोस्त हैं जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। नाम बता दो श्रोता साथियों जुड़ना चाह रहे हैं, अकोला से हैं शिशिरा देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। जुड़ रहे हैं कश्मीर से फैजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, मंजू रंजना और बदना प्रियल और साहिल विश्वकर्मा, दिव्यांशी विश्वकर्मा जी जुड़ना चाह रहे हैं। और भी श्रोता साथी आवारपुर से शेख हबीब, छोटू भाई शेख, साजन बेजम, फिजान शेख, फारूक शेख, वसीम शेख, अफशाना इरफान शेख, अब्दुल्ला लोहेवाला, परवान शेख जी। कोलेगांव से हैं पांडुचंदन, उषाचंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक और प्रथमेश संतोष, पांडुरंग कुम्हार जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आंखों की गुस्ताखियां। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, फिल्म का नाम है कलंक, गीत के बोल हैं कलंक नहीं इश्क है पिया। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं मजर अली अंसारी, रजा बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी गाजीपुर से, आजाद अली अरविंद, रिजवाना सलीम और परवीन जी जुड़ना चाह रहे हैं, और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ में। नरसिंहगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सोमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी जी। इसी बीच साथी जुड़ना चाह रहे गणेशपुर से हैं फिरासत हुसैन, मोहम्मद अल्फीज, नाहिरा गुड़िया, आफरीन जुबिया, और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दूं श्रोता साथियों, अनुरोध करता बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, उत्कर्ष चौहान, डुग्गू जी, और भी श्रोता साथी बरकाकाना से हैं अफजाल ताज, साइन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, अफजल मलिक जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। आपको नाम बता दूं श्रोता साथियों, बरेली से आमिर अंसारी, माहिनूर अंसारी, शमीम अंसारी जी, नसरीन अंसारी, शमा अंसारी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं कलंक नहीं इश्क है पिया।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है श्रोता साथियों, आया है जलालाबाद वेस्ट से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों इश्क गीत के बोल हैं जरा सा। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में सुरेश गगनेदा, पूनम गगनेदा, दिशानी नियमित आहूजा जी और भी दोस्त इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। दनोरी तेलीवाला से निशार सुलमानी, नौशाद सुलमानी, बीबी आलिया आयन बाबू जी। संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजीव राजेश, शीतल राजेश जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में है। किशोर नगर अमरावती से हैं हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गुणानी, अर्चना ताई गुणानी जी। जुड़ना चाह रहे फजल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल शालिनी, टीवानशी खेड़ा और भी हमारे दोस्त इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। महाराष्ट्र से हैं दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्र रामेकर, समस्त रामेकर परिवार सदस्यगण और भी श्रोता साथी हमारे इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी साथियों आपको जुड़ना चाह रहे हैं। बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे जी। मुंगिसापुर से हैं जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, सबिस्ता, मोहम्मद सैफ मंसूरी, लुबाना यश मंसूरी जी और भी दोस्त इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। धर्मपुरी से हैं मुशाजी खत्री, ईशाजी खत्री, जाकिर खत्री जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राय, तिथिन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी और भी दोस्त इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। राजस्थान से हैं समुदाय खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। सरदना मेरठ से नील जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन। मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। नाम बता दो साथियों। छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय तुषार तामोरिया और भी दोस्त हैं जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। विक्रम कटवासा, सचिन सतीश, योगेश कटवासरा, राजस्थान हनुमानगढ़ से हैं ये। पोटाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू और भी दोस्त हैं। गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती माहेश्वरी देवी, सोनू मनु, राहुल, लक्ष्मी, प्रियंका, सृष्टि बन्नी जी। छत्तीसगढ़ से हैं कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू जी और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। कबीरधाम छत्तीसगढ़ से कमलकांत गुप्ता, रिमझिम गुप्ता जी। चंद्रलाल श्रीवास बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, संजन शाहू, हेमंत नामदेव जी। बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी जी, लोकेश जोशी, पायल जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, विदही जोशी, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट जी, मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफार डावर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जरा सा। आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार साथियों।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। श्रोता साथियों जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा, इसे आप सुन पाएंगे 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, इसे आप सुन पाएंगे 8 बजे। तो श्रोताओं जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे रात 9 बजे शामी कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। उन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: वो कहवाए जयवीरे एक बैरू मजबूत बने हैं, तयवीरे पूरा परिवार मजबूत बने हैं। पर मजबूती खाली शब्द केवा थकी नती आवती, आवे है अधिकार थकी, सुरक्षा थकी अने आपरे अस्तित्व नी पहचान थकी। जमीनी पैसा माते बैरा नो नाम एने हपना नो पहलू पगतियो है। इने मले है आत्मविश्वास, रुपया नी सुरक्षा अने आपड़ा फैसला खुद लेवानी ताकत। तो आओ बोलो आजे मलीने आवाज उठावा। એટલે હંગરી સૂર્યે, હંગરી બુને, હંગરી માય આપણા હકને જમી માટે ગર્વ થકી ઉભી થઈ શકે। બોનને અધિકાર, કિંમકી અધિકારસ અસલી તાકત હે।
2: વાગડ રેડિયો એવં વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત।
0: આપ સભી સુન રહે હૈ આપકા અપના સામુદાયિક રેડિયો વાગડ રેડિયો 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि आज जो छोटे प्रयास हम करने वाले हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ी पहचान बनेंगे।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कशिश, जीवन में हर व्यक्ति सफलता, सम्मान और पहचान चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका नाम समाज में आदर के साथ लिया जाए और लोग उसके कार्यों को याद रखे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन ये पहचान अचानक नहीं बनती, ये किसी एक दिन या एक बड़े काम से नहीं बनती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि एक एक बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक दिन हमारी बड़ी सफलता और पहचान बन जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसीलिए श्रोता साथियों, कहा गया है कि आज का छोटा प्रयास कल की बड़ी पहचान बन जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना पहले इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम आज जो छोटे प्रयास करेंगे वही हमारे कल की सफलता या फिर कह सकते हैं कि पहचान बनेंगे। जैसा कि हमने गीत से पहले भी बताया था हमारे साथियों को जागृति जी कि जीवन में सफलता अचानक नहीं मिलती,
1: जी हाँ,
0: बल्कि ये छोटे छोटे प्रयासों, निरंतर मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम होती है। दोस्तों आज हम जो भी छोटे छोटे कदम उठाते हैं वही आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व और पहचान की नींव बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में हमारे युवा साथियों के लिए समझने वाली बात ये है जागृति जी कि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक ही दिन में पूरा नहीं होगा, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए हमें साथियों निरंतर छोटे प्रयास करने पड़ेंगे और सबसे पहले तो एक योजना बनानी होगी।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि आज का हर छोटा प्रयास भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों का आधार बनता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज का समय तेजी से बदल रहा है, हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में यदि हम ये सोचे कि हमें एक ही दिन में बड़ी सफलता चाहिए
0: जी,
1: तो संभव नहीं है श्रोताओं, क्योंकि सफलता एक यात्रा है जो छोटे छोटे कदमों से पूरी होती है। अगर कोई विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, हर दिन कुछ नया सीखता है, तो धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता है और एक दिन वह विद्यार्थी अपनी मेहनत से बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेता है।
0: बिल्कुल,
1: साथियों यही छोटे प्रयास आगे चलकर उसकी पहचान बन जाते हैं। इसीलिए हम अपने आसपास भी ऐसे ही कई उदाहरण देखते हैं जहां लोगों ने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।
0: बिल्कुल,
1: कोई व्यक्ति अगर हर दिन अपने काम को ईमानदारी से करता है कशिश, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, तो समय के साथ उसका अनुभव बढ़ता जाता है।
0: जी हाँ,
1: धीरे धीरे वही अनुभव उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है और एक दिन वही व्यक्ति समाज में सम्मान और पहचान प्राप्त कर लेता है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि आज के युवाओं के सामने अनेक अवसर हैं, लेकिन कई बार वे जल्दी सफलता पाने की इच्छा में धैर्य खो देते हैं।
1: जी हाँ,
0: साथियों वे सोचते हैं कि एक ही प्रयास से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन देखते हैं जागृति जी यहाँ पर कि वास्तविकता ये रहती है कि हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयासों से ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे युवाओं को ये समझना चाहिए कि वे हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। दोस्तों अपनी गलतियों से आप सबक ले और निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हम देखते हैं कि छोटी शुरुआत ही आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बनती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि छोटे प्रयास तभी फलदायी होते हैं जब उनमें निरंतरता और अनुशासन हो। साथियों
1: जी हाँ,
0: देखेंगे कि यदि हम कुछ दिन मेहनत करें और फिर रुक जाएं, तो उसका परिणाम उतना प्रभावी नहीं होता जितना हम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं तब का परिणाम हम देखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति नियमित और अनुशासित रहें। दोस्तों आपके द्वारा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करने की आदत ही आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए अग्रसर करेगी।
1: जी हाँ,
0: और अब देखते हैं कि ये आदत व्यक्ति के चरित्र को मजबूत भी बनाती है और जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि छोटे प्रयासों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वे हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब हम कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास हमें अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि एक एक कदम बढ़ाते हुए हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों जीवन में छोटे प्रयासों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। कई बार कशिश लोग सोचते हैं कि उनके छोटे छोटे प्रयासों का कोई महत्व नहीं है।
0: जी हाँ,
1: वे सोच कर प्रयास करना ही छोड़ देते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये साथियों कि हर छोटा प्रयास भविष्य में बड़ा परिणाम देता है। जैसे कि एक किसान रोज अपने खेत की देखभाल करता है, समय पर पानी देता है, मेहनत करता है, शुरुआत में खेत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद हम भी देखते हैं कि वही खेत हरी भरी फसल से लहलहाने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: और यही सब उसके रोज के छोटे छोटे प्रयासों का ही परिणाम होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता ही रहता है कि छोटे प्रयासों के परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देते हैं, जिससे श्रोता साथियों हमारे अंदर निराशा पैदा हो जाती है। ऐसे समय में हम हमारे युवा साथियों से ये कहना चाहेंगे कि उन्हें धैर्य और सकारात्मक सोच का सहारा लेना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि दोस्तों यदि हम विश्वास के साथ अपने प्रयास जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से ही एक दिन उसका परिणाम हमारे सामने आ ही जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: और हम देखते हैं कि इतिहास गवाह है साथियों कि जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रयास नहीं छोड़े वे आगे चलकर समाज के लिए प्रेरणा बने हैं। जागृति जी, हर बड़ी सफलता के पीछे अनेक छोटे कदम छिपे होते हैं। साथियों देखते हैं कि एक लेखक रोज अपनी पंक्तियों को लिखकर ही एक दिन महान पुस्तक का निर्माण करता है।
1: बिल्कुल,
0: एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करके ही विश्व स्तर पर पहचान बनाता है। इसी तरह एक विद्यार्थी रोज पढ़ाई कर और मेहनत से ही अपने जीवन और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमारे युवा साथियों को ये समझना चाहिए कि छोटे प्रयास ही बड़े सपनों को साकार करने का मार्ग बनाते हैं।
1: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बातें तो कर रहे हैं, तो ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज का छोटा प्रयास कल की बड़ी पहचान बन जाता है, इसी के साथ जैसे कि साथियों आपको बताना चाहेंगे कि आज के युवाओं के लिए बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कई युवा जल्दी सफलता पाने की इच्छा रखते हैं कशिश, और जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता है तो वे निराश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन साथियों, आपको समझना होगा कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे लंबे समय तक किए गए छोटे छोटे प्रयास होते हैं। अगर युवा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करे, अपने कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहें, तो निश्चित ही एक दिन वे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां भी आती है, ऐसे समय में छोटे प्रयास ही हमें संभालते हैं। अगर हम एक एक कदम आगे बढ़ाते रहें तो धीरे धीरे कठिनाइयां भी कम होने लगती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यही छोटे प्रयास हमें मजबूत बनाते हैं और हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बताएं हमारे साथियों को तो छोटे प्रयासों का सबसे बड़ा आधार समय का सही उपयोग भी है। दोस्तों, जो युवा अपने समय को व्यर्थ गतिविधियों में नष्ट करने के बजाय उससे सीखने, पढ़ने और कौशल विकसित करने में लगाते हैं, वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, समय का हर छोटा सा निवेश भविष्य में बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसी के साथ ही जब व्यक्ति छोटे छोटे लक्ष्य तय करके उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर होता है जागृति जी, तो उसके भीतर से आत्मविश्वास उसका बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: और यही आत्मविश्वास हम देखते हैं कि आगे चलकर उसे बड़े और कठिन कार्य करने की भी शक्ति देता है।
0: जी हाँ।
1: इस प्रकार साथियों, छोटे प्रयास केवल सफलता ही नहीं बल्कि मजबूत व्यक्तित्व की नींव भी बन जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि हर प्रयास के साथ व्यक्ति को नया अनुभव मिलता है, चाहे वह प्रयास सफल हो या असफल। दोनों ही परिस्थितियों में जागृति जी, व्यक्ति कुछ न कुछ नया सीखता है और यही अनुभव आगे के निर्णयों को बेहतर बनाता है, जिससे जीवन की राह और स्पष्ट हो जाती है।
0: जी हाँ, क्योंकि हमें समझना होगा श्रोताओं की पहचान केवल बड़े पद या धन से नहीं मिलती, असली पहचान हमारे कर्मों से बनती है। और जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है,
1: बिल्कुल,
0: वही समाज में सम्मान और विश्वास प्राप्त करता है। इसीलिए हमें हर काम को पूरी लगन से करना होगा, मेहनत के साथ करना होगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो श्रोताओं, क्योंकि समय भी छोटे प्रयासों के महत्व को समझाता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम रोज अपने समय का सही उपयोग करेंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर हम आज के छोटे प्रयासों को टालते रहेंगे तो भविष्य में हमें पछतावा ही मिलेगा।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि आज का हर छोटा प्रयास भविष्य की नींव है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ अगर बात करें तो साथियों, छोटे प्रयास हमारे मानसिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं, क्योंकि जागृति जी, जब कोई युवा बार बार प्रयास करता है तो वह चुनौतियों का सामना करना सीख जाता है। इससे जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी उसे हिम्मत मिलती है, और कह सकते हैं कि लगातार प्रयास करते रहने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा स्पष्ट होने लगती है।
0: जी हाँ।
1: इससे वह यह समझ पाता है साथियों कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस प्रकार अपने सपनों को साकार करना है। क्योंकि दोस्तों, आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि छोटे प्रयास कभी छोटे नहीं होते, वे धीरे धीरे सपनों को आकार देते हैं, और एक दिन वही आपके द्वारा किए गए छोटे प्रयास व्यक्ति की पहचान, सम्मान और सफलता का आधार बन जाते हैं जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, तो हम कह सकते हैं कि जीवन में कोई भी सफलता अचानक नहीं मिलती, ये लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है श्रोताओं। इसीलिए हमें अपने हर छोटे प्रयास को महत्व देना होगा और निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। जब हम आज मेहनत, धैर्य और लगन के साथ छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो वही कदम आगे चलकर हमारी पहचान बनते हैं, और यही प्रयास हमें भीड़ से अलग करते हैं कशिश, और हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमने ढेर सारी बातें की कि आज के हमारे किए गए छोटे प्रयास हमारे कल की सबसे बड़ी पहचान बन सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें हमारे युवा साथियों को जरूर पसंद आई होंगी, क्योंकि अब देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवा साथियों को एक और गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं।
0: बिल्कुल।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
0: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि हम हमारे बच्चों की जो जिज्ञासा है उसे कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिज्ञासा का अर्थ होता है कुछ नया सीखने की इच्छा। अंजलि जी, ये किसी भी चीज को जानने की रुचि या फिर जिज्ञासा हो सकती है। श्रोता साथियों, कह सकते हैं कि जिज्ञासा एक बच्चे की अच्छी विशेषता होती है।
0: जी जी।
1: कुछ ऐसा करने की जो उन्हें नहीं पता हो, और साथ ही किसी चीज को लेकर जानने की तीव्र इच्छा को भी हम जिज्ञासा कह सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: जी जी।
1: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोताओं को गीत सुनवाए हम पहले अंजलि जी।
0: जी बिल्कुल। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश, हमने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को विषय से रूबरू करा दिया था कि आज हम बातचीत करने वाले हैं बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के क्या उपाय हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश कि बच्चों में जिज्ञासा एक आम विशेषता है। श्रोता साथियों, जब आप उन्हें कुछ नया दिखाते हैं या बताते हैं तो उनकी आंखों में चमक देखना एक सुखद अनुभव होता है।
1: बिल्कुल,
0: और जबकि उनका सवाल करना, सीखने की उत्सुकता और हर उत्तर को जानना आपको कभी कभी परेशान कर सकता है।
1: जी हाँ,
0: उनकी बच्चों जैसी जिज्ञासा नन्हे बच्चों के लिए अद्भुत काम करती है।
1: जी हाँ,
0: यानी कि हम देखते हैं कि स्वाभाविक जिज्ञासा वाला बच्चा लगातार खोजबीन में लगा रहता है, सीखेगा, रचनात्मक होगा, लिंक से हटकर सोचेगा और सामान्य चीजों में भी कुछ नया खोजेगा।
1: जी हाँ,
0: इसलिए अगर आपका बच्चा आपसे कोई सवाल पूछता है तो जान ले कि उसने सोचना शुरू कर दिया है। आपके बच्चे का विकास और संज्ञानात्मक विकास भी अपनी गति से आगे बढ़ना शुरू हो गया है।
1: जी हाँ,
0: बच्चों में जिज्ञासा के लाभों को और उनकी जिज्ञासा को विकसित करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है।
1: जी हाँ, जैसे कि अंजलि जी, जिज्ञासा बच्चे के दिमाग को अधिक सक्रिय बना सकती है। साथ ही यह आपके बच्चे को आश्चर्य की भावना देती है और यह आपके बच्चे को अधिक सोचने और सवाल पूछने के लिए भी प्रेरित कर सकती है।
0: जी हाँ,
1: आपको बताएं तो यह बच्चों को अधिक चौकस और जानकारी के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाती है। जब कोई बच्चा अंजलि जी जिज्ञासा जगाता है तो इससे उसे अपने आसपास की अलग अलग चीजों के बारे में ज्यादा जानने का मौका मिलता है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि वे अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोचने और अलग अलग तरीकों से सोचने की कोशिश करने लगते हैं। और इसके अलावा साथियों, जिज्ञासु मानसिकता को बढ़ावा देने से बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में ज्यादा उत्साहित हो पाते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं और अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढते हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि बच्चों में जिज्ञासा बच्चों के सीखने और विकास में एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम करती है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि कैसे जिज्ञासा उन्हें जीवन में छोटी छोटी चीजों का अवलोकन करने में सक्षम बनाती है।
1: जी जी,
0: उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया करती है। इसी के साथ कशिश, हम देखते हैं कि बच्चों की जिज्ञासा जो है उसको विकसित करने की कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने की होती है।
1: जी हाँ,
0: उसमें सबसे पहली बात आती है मुझे आश्चर्य है वाक्यांश का प्रयोग करना।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि श्रोता साथियों, अपने बच्चों से बात करते समय अक्सर मुझे आश्चर्य होता है वाक्यांश का आपको प्रयोग करने का प्रयास करना है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि हर शाम सूरज क्यों ढल जाता है, या मुझे आश्चर्य होता है कि तारे क्यों चमकते हैं। इससे उनकी जिज्ञासा क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें सोचने का मौका मिलेगा और वे ज्यादा जिज्ञासु बन पाएंगे।
1: जी हाँ, साथी श्रोता साथियों, हतोत्साहित न हो, यानी कि अपने बच्चे में जिज्ञासा पैदा करने से वह अपनी पसंद की चीजों में दिलचस्पी लेने लगेगा।
0: जी हाँ,
1: अपने बच्चे को शौक या फिर अन्य रुचियों को तलाशने से रोकने के बजाय आप इसके विपरीत करें।
0: जी हाँ,
1: यानी कि आपको ये पता लगाना है कि आपके बच्चे को क्या प्रेरित करता है, उसे खुले दिमाग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही उनके कभी न खत्म होने वाले सवालों पर भी आप परेशान न होए।
0: जी हाँ,
1: इसके बजाय उनके सवालों का धैर्य पूर्वक और मुस्कुराहट के साथ जवाब दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के नेतृत्व का हमें पालन करना है।
1: जी हाँ,
0: यानी कि श्रोता साथियों, ज्यादातर लोग अपने बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए उत्सुक रहते हैं।
1: जी जी,
0: कभी कभी इसके विपरीत करना भी फायदेमंद हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों बताना चाहेंगे कि अपने बच्चों को आगे बढ़ने दें, चीजों को अपने नजरिए से उन्हें देखने दें, फिर जिज्ञासा को अपनाते हुए अपने बच्चों के साथ जुड़ें। जब वे खोजबीन करने निकल पड़े, इससे बच्चों का सहारा महसूस करने में भी आप मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, साथियों ने चौकस बनाए, यानी कि साथियों अपने बच्चे को चीजों की ओर इशारा करके और सवाल पूछ कर आप चौकस बना सकते हैं। आप कोई उनके साथ खेल भी खेल सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए, हर एक एक्टस की ओर इशारा करें और फिर अपने बच्चे से उसी रंग की चीजें ढूंढने को आप कहें। जिज्ञासा को बढ़ावा देने में उनकी मदद करें, क्योंकि इससे वे अपने आसपास की चीजों के प्रति ज्यादा चौकस हो जाएंगे।
0: जी हाँ,
1: ऐसी चीजों को वे नोटिस करेंगे जिनमें उनकी आमतौर पर दिलचस्पी नहीं होती है या फिर जिन पर वे ध्यान नहीं देते हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इस तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि बच्चों की जिज्ञासा को हमें कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल,
0: ये बातें निरंतर कार्यक्रम सच्चा बचपन में हमारे श्रोता साथियों के साथ यूं ही बनी रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि साथियों बातें बहुत ही अच्छी चल रही है कि किस प्रकार से हम अपने बच्चे को जिज्ञासा कौशल सिखा सकते हैं, इसी के साथ ही हम जैसा कि गीत से पहले भी कुछ ऐसे सुझावों को जान रहे थे जो बच्चों के लिए जरूरी है, अब यही अंजलि जी बात करते हैं कि स्वतंत्र खेलने की अनुमति हमें बच्चों को देनी है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को किसी समस्या का समाधान निकालना चुनौतीपूर्ण लगता है
1: जी,
0: तो ये आपको चिंतित कर सकता है। हालांकि जल्दबाजी में आकर उसे हल न करें, ये देखना जरूरी है कि बच्चा कर क्या रहा है। हालांकि उसे धक्का न दे, मार्गदर्शन न दे या उसे यह न बताए कि ये ऐसे किया जा सकता है। बच्चों में अधिक जिज्ञासा पैदा करने, आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करने और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने के लिए हमें स्वतंत्र खेल की अनुमति बच्चों को देनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ उन्हें गलतियां करने देना है। श्रोता साथियों, गलतियों के लिए जगह बनाएं। गलती करने पर अपने बच्चों की आलोचना आपको नहीं करनी है, इसके बजाय कोशिश करनी है कि उनके आप सराहना करें, उन्हें इससे सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। गलती के बाद हमें बच्चों को चिल्लाना नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों को अधिक जिज्ञासु बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो धीरे धीरे अपने आप ही समझने लग जाए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है।
0: बिल्कुल साथी दोस्तों, ने खोजबीन की भी आजादी आप दे, यानी कि आपका बच्चा उन चीजों की ओर आकर्षित होगा जो उसे पसंद है, उन पर कुछ थोपने के बजाय उन्हें तलाशने दे। जबकि माता पिता की सामान्य प्रवृत्ति ये होती है अंजलि जी कि वह बच्चों को वही करने के लिए मजबूर करते हैं जो सही है।
1: जी हाँ,
0: इससे उन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। साथियों, बहुत ज्यादा सख्त या फिर बहुत ज्यादा सावधान रहना बच्चे की स्वाभाविक रचनात्मकता को बाधित कर सकता है, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि बच्चों को आजादी दे, जो वे चाहते हैं उसे तलाशने उन्हें दें।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ हमें अनुकूल वातावरण बनाना है। श्रोता साथियों, बच्चा हमेशा निरीक्षण, खोज, आत्मसात करता रहता है। उन्हें दिलचस्प खिलौने, चित्र, किताबें, ऐसी चीजें हमें दिखाते रहना है। उनके लिए खोज करने के लिए एक उत्तेजक जगह हमें बनानी है, इससे सकारात्मक रूप से जुड़े रहेंगे और उनकी जिज्ञासा जागृत होती रहेगी।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हम देखते हैं कि

0: बच्चे जो हैं वो सादे खिलौनों की तुलना में कागज के टुकड़े से ज्यादा खुशी से खेलते हैं। इसी तरह उन्हें हमें ऐसे ही खिलौने देने हैं जो उनके लिए दिलचस्प हो और उन गतिविधियों को खोज खोज कर वो अलग अलग चीजें करते रहें।
1: जी हाँ साथियों, उनके प्रश्नों का भी आपको सही उत्तर देना है। साथियों हम देखते हैं अंजलि जी कि बच्चों की आदत होती है कि वह अक्सर बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं और जबकि वयस्क उन्हें गहराई से जवाब देने की कोशिश करते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोताओ, शायद इसकी जरूरत ही नहीं हो, इसलिए पूछताछ को प्रोत्साहित करते हुए बिना किसी जटिलता के उनके सवालों का आप जवाब दें।
0: जी बिल्कुल,
1: उन्हें अनदेखा न करें या बहुत ज्यादा जानकारी से अभिभूत भी न करें, नहीं तो आप सीखने का मजा खत्म कर देंगे बच्चों का।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ हमें बच्चों की दिनचर्या में चुनौतियों को भी शामिल करना है।
1: जी हाँ।
0: और इसी के साथ हमें दुनिया में उनकी रुचि पैदा करनी है, यानी कि आसपास की चीजों को लेकर जिज्ञासा को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करने हैं और खुले में प्रश्नों को पूछने के लिए भी हमें बच्चों को प्रेरित करना है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है और उनके साथ यात्रा पर भी जाना है। सीखने को एक मजेदार चीज के रूप में हमें देखने की कोशिश करनी है बच्चों के साथ ही।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित हमें करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। तो श्रोताओ, इस तरीके के कुछ सुझावों को अपना कर आप अपने बच्चे के अंदर जिज्ञासा के कौशल को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो जैसा कि बातें आज के कार्यक्रम में अंजलि जी हमारे दोस्तों से ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख भी रहे हैं कि समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी बिल्कुल,
1: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना यहाँ पर एक और गीत सुन लिया जाए।
0: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपने राय सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हूँ अणी माटी में जमी हूँ। अणी माटी तकीस जाने जाऊँ हूँ। मैं खेत हमारा बीज बोया वो फसल बहाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमीन माते मारो अधिकार के नती। सूरी जन्म तक इस हकदार है। कानून ने आ बात मानी है। न पढ़ना पूटे एवं हक को ले सके न रिवाज और सच में बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोलो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान।
1: होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है कि ईंधन संकट के दौर में सौर क्रांति से बदलती तस्वीर को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां ऊर्जा की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के विस्तार ने ऊर्जा की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोताओं, दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल, कोयला और प्राकृतिक गैस पारंपरिक ईंधनों के भंडार तेजी से समाप्त हो रहे हैं, और यही कारण है अंजलि कि आज ईंधन संकट पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे कठिन समय में सौर ऊर्जा एक नई उम्मीद बनकर उभरी है जिसने ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। और ये सौर क्रांति न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रही है बल्कि गाँवों, शहरों और आम लोगों के जीवन की तस्वीर भी बदल रही है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला एक गीत। आप बने रहिएगा श्रोता साथियों, कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है ईंधन संकट के दौर में सौर क्रांति की बदलती तस्वीर को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, जैसा कि कहा गया है कि सूरज की किरणों को अपनाएंगे तो ईंधन संकट से देश बचा पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि सौर ऊर्जा प्रकृति द्वारा दिया गया ऐसा उपहार है जो कभी समाप्त नहीं होता। हम देखते हैं कि सूरज हर दिन हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि इस ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऊर्जा का स्थायी स्रोत बन सकता है। पहले हम देखते हैं कि केवल पेट्रोल, डीजल और बिजली पर ही लोग निर्भर थे, लेकिन अब धीरे धीरे सौर ऊर्जा की ओर कदम भी बढ़ा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: घरों की छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं, खेतों में सौर पंप लगाए जा रहे हैं और सड़कें भी सौर लाइटों से रोशन हो रही है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज दुनिया एक ऐसे दौर में जी रही है जहां ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल, कोयला और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है। कहीं तेल के भंडार कम हो रहे हैं तो कहीं प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: गांव हो या शहर, हर जगह बिजली और ईंधन की समस्या लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण उभरती है, सौर ऊर्जा।
0: जी हाँ।
1: यानी कि सूरज की रोशनी से बनने वाली ऊर्जा। आज सौर क्रांति केवल बिजली बनाने का तरीका नहीं रह गई, बल्कि ये गांवों की तस्वीर बदलने का आंदोलन बनती जा रही है। जागृति जी, आज कार्यक्रम में हम यही जान रहे हैं कि ईंधन संकट क्या है। श्रोता साथियों, कई वर्षों से पूरी दुनिया पेट्रोल, डीजल, कोयला और गैस जैसे ईंधनों पर निर्भर रही है। कारें चलानी हो, कारखाने चलाने हो, बिजली बनानी हो या खाना पकाना हो, हर जगह इन्हीं ईंधनों का प्रयोग होता है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। हम देख पा रहे हैं जागृति जी कि धीरे धीरे प्राकृतिक ईंधन के भंडार कम होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ रही है और जरूरतें भी बढ़ रही हैं, जिसका परिणाम ये हुआ है कि पेट्रोल डीजल महंगे होते गए हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर आम परिवार की पहुंच से दूर होने लगे
0: जी
1: हैं।
0: हाँ।
1: और प्रदूषण ने वातावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है।
0: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि ईंधन संकट का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन है। जैसे कि पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन लाखों वर्षों में बनते हैं, लेकिन हम मनुष्य उन्हें बहुत तेजी से समाप्त कर रहे हैं। वाहनों की संख्या बढ़ने से ईंधन की खपत भी लगातार बढ़ रही है।
1: जी जी।
0: इसके कारण महंगाई भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवहन का खर्च बढ़ने से हर वस्तु महंगी हो जाती है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा लोगों को राहत देने का कार्य कर रही है।
1: बिल्कुल।
0: एक बार सोलर पैनल लगाने के बाद कई वर्षों तक कम खर्च में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है श्रोता साथियों। और कहा भी गया है कि ईंधन होगा जब कमजोर, सौर ऊर्जा बनेगी सबसे बड़ा जोर। यानी कि श्रोताओं, भारत जैसे देश में यानी कि हमारे देश के लिए सौर ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ वर्ष के अधिकांश दिनों में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है। जैसे कि अगर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की बात करें अंजलि, तो कई राज्यों में बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इससे बिजली उत्पादन बढ़ रहा है और कोयले पर निर्भरता कम हो रही है।
1: जी हाँ।
0: गाँव में जहाँ पहले अंधेरा रहता था, वहाँ अब सौर लाइटें रात को उजाला दे रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा ने विकास की नई राह खोल ली है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें तो पहले गांवों में बिजली कटौती आम बात थी।
0: बिल्कुल।
1: गांवों में रात होते ही अंधेरा छा जाता था, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी और किसान सिंचाई के लिए परेशान रहते थे।
0: जी हाँ।
1: लेकिन अब कई गाँवों में सोलर लाइट, सोलर पंप और सोलर स्ट्रीट लाइट लगने लगी है। आज गाँव की तस्वीर बदल चुकी है। हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा ने महिलाओं के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन किया है। पहले कई गांवों में महिलाएं लकड़ी इकट्ठा करने जंगल जाती थी, धुएं वाले चूल्हों से उनकी आंखें और फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता था। अब सौर ऊर्जा से सोलर कुकर उपयोग होने लगे हैं, घरों में रोशनी बढ़ी है, सिलाई मशीन और छोटे काम आसान हुए हैं। हम देखते हैं जागृति जी कि कई महिलाओं ने सोलर आधारित छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही थी, बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर तक के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान।
1: होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हिती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि दोस्तों जब भी हम कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तो हमारी आपसे बातें रहती है कुछ नए स्वास्थ्यप्रद विषयों को लेकर।
2: बिल्कुल,
1: तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं

0: दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि इस गर्मियों के मौसम में जो मधुमेह रोगी है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मियों का जो मौसम है वो अपने साथ तेज धूप, लू, पसीना, शरीर में पानी की कमी, कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, जिन लोगों को मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी होती है उनके लिए यह मौसम जो है वो और भी ज्यादा सावधानी मांगता है।
0: बिल्कुल।
1: थोड़ी सी लापरवाही के कारण हम देखते हैं कि कमजोरी, चक्कर, शुगर बढ़ना या घटना, पैरों में घाव, डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि मधुमेह रोगी गर्मियों में किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या खाएं, क्या न खाएं, कितना पानी पिएं, धूप से कैसे बचें, पैरों की देखभाल क्यों जरूरी है और परिवार उनकी कैसे मदद कर सकता है।
0: जी हाँ।
1: तो बातें तो ढेर सारी कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम के पहले इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मधुमेह रोगी गर्मियों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी और कशिश, हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम मधुमेह रोगियों के लिए विशेष सावधानी का समय होता है।
1: बिल्कुल,
0: तेज धूप, बढ़ता तापमान, शरीर में पानी की कमी, अत्यधिक पसीना और थकान जैसी समस्या रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकती है। गर्मी के मौसम में शरीर जल्दी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है।
2: बिल्कुल,
0: जिसमें हम देखते हैं कि मधुमेह रोगियों की स्थिति है वो गंभीर हो सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, आवश्यकता है कि वे गर्मियों में अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें।
2: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, जैसा कि आपने बताया। ऐसे में डायबिटीज के जो मरीज हैं, उन्हें वैसे तो हर मौसम में सावधानी रखनी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन श्रोता साथियों, अगर आमतौर पर देखा जाए तो गर्मियों में शरीर में पानी की कमी के कारण मधुमेह रोगियों को कह सकते हैं कि ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अधिक खतरा रहता है, क्योंकि गर्मियों में अधिक पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है।
1: बिल्कुल,
2: जिससे ब्लड शुगर का स्तर जो है बढ़ या घट सकता है। और हम देखते हैं अंजलि जी की तेज धूप शरीर को जल्दी थका भी देती है।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि आज गांव में भी मधुमेह जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। पहले इसे शहरों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब बदलती जो जीवन शैली है, गलत खान पान, तनाव और शारीरिक मेहनत की कमी के कारण गाँव में भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं।
2: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गर्मी में मधुमेह रोगियों को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। ये क्यों होता है, इसके बारे में बात करें तो गर्मी का मौसम जो है वो शरीर से अधिक पसीना निकालता है।
2: बिल्कुल,
1: इससे शरीर में पानी और जरूरी जो खनिज है वो कम हो जाते हैं। मधुमेह रोगी में यह समस्या और तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि उनका शरीर पहले से ही संवेदनशील होता है। गर्मियों में मधुमेह रोगियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि शरीर में पानी की कमी, कमजोरी और चक्कर, शुगर लेवल का अचानक बढ़ना या गिरना, पैरों में संक्रमण, त्वचा संबंधित समस्याएं, अधिक थकान, लू लगना, आंखों में जलन और धुंधलापन। इसलिए श्रोता साथियों, गर्मियों में मधुमेह रोगियों को सामान्य लोगों की तुलना में अधिक सावधानी की जरूरत पड़ती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मधुमेह रोगियों के लिए गर्मियों में सबसे महत्वपूर्ण बात है शरीर में पानी की कमी न होने देना। पानी क्यों जरूरी है इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि पानी शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है।
1: बिल्कुल,
0: यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। साथ ही हम देखते हैं कि रक्त संचार को भी यह सही बनाए रखता है। श्रोता साथियों, रोगियों को दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। यदि अधिक पसीना आए तो पानी की मात्रा और बढ़ा देनी चाहिए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। इसी में श्रोता साथियों, हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल,
2: जैसे कि हमें बहुत ज्यादा मीठे शरबत या फिर कोल्ड ड्रिंक से बचना है। दोस्तों, पैकेट वाले जो पेय पदार्थ होते हैं उनका सेवन हमें कम ही करना है। इसके बजाय हम श्रोता साथियों सादा पानी ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है।
1: बिल्कुल,
2: साथ ही दोस्तों भोजन का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी की डायबिटीज मरीजों के लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और गर्मियों में हल्का और पौष्टिक भोजन करना उनके लिए काफी जरूरी है। ऐसे में वे अपने आहार में हरी सब्जियां, दही और छाछ, साथ ही खीरा, ककड़ी जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें शामिल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें कि किन चीजों से उन्हें दूरी बनाकर रखनी है, तो श्रोता साथियों, ज्यादा मीठा हमें नहीं खाना है, तली हुई चीजें हमें नहीं खानी है, फास्ट फूड से हमें दूरी बनाकर रखनी है, बहुत ज्यादा नमक का सेवन हमें नहीं करना है।
2: बिल्कुल,
1: आइसक्रीम और अधिक मीठे पेय जो होते हैं वो हमें नहीं खाने हैं। अधिक आम और अंगूर जैसे मीठे फल का भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। श्रोता साथियों, ध्यान रखें कि स्वाद के लिए खाया गया गलत भोजन शरीर को नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं।
2: बिल्कुल,
0: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल
2: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे कि किस तरीके से मधुमेह जो रोगी हैं वो गर्मियों में अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना। यही बात करी कि समय पर भोजन करना क्यों जरूरी है। श्रोता साथियों, बहुत से लोग गर्मी में भूख कम लगने के कारण भोजन छोड़ देते हैं, लेकिन मधुमेह रोगियों के लिए ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। यदि समय पर भोजन नहीं किया जाए तो शुगर अचानक कम हो सकती है, इससे चक्कर, पसीना, घबराहट और कमजोरी आती है। इसलिए समय पर भोजन करें, लंबे समय तक पेट को खाली न रखें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार खाएं। दवा और भोजन का समय हमें नियमित रखना है। इसी के साथ श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि गर्मी की जो तेज धूप होती है दोपहर की, उस समय मधुमेह रोगियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप बहुत ज्यादा होती है, उस समय हमें बाहर नहीं निकलना है। बाहर जाते समय हमें सिर ढकना है, हल्के और सूती रंग के कपड़े पहनने हैं, छाता या गमछा हमें उपयोग में लेना है और ज्यादा देर तक धूप में काम नहीं करना है। गांव में खेतों में काम करने वाले मधुमेह रोगियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, उन्हें बीच बीच में आराम जरूर करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम बताना चाहेंगे कि उन्हें पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए। नींद की कमी से ब्लड शुगर है वो बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, अच्छी नींद के हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि हमें मानसिक शांति मिलती है, शरीर को आराम मिलता है, हमारे हार्मोन है वो भी संतुलित रहते हैं। श्रोता साथियों, नींद सुधारने के लिए आप कुछ उपाय हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आप समय पर सो सकते हैं, मोबाइल का कम उपयोग कर सकते हैं और शांत वातावरण में सोने से हमारी नींद भी अच्छी होती है और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।
2: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो उन्हें नियमित रूप से अपने शुगर की जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों गर्मी में शरीर की स्थिति जल्दी बदल सकती है, इसलिए ब्लड शुगर की नियमित जांच बहुत जरूरी है। यदि अंजलि जी मरीज को कमजोरी, अधिक प्यास, चक्कर या फिर पसीना महसूस हो रहा है तो तुरंत शुगर की जांच करवानी होती है।
1: जी हाँ,
2: या फिर श्रोता साथियों, आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार उनके परामर्श को भी समझ सकते हैं और उनके द्वारा बताए गए जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
2: अब यहीं अगर बात करें पैरों की देखभाल की तो हम देखते हैं कि मधुमेह मरीजों के पैरों में संक्रमण बहुत जल्दी हो जाता है।
1: जी जी,
2: गर्मियों में धूल, पसीना और गर्म जमीन पैरों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए मरीजों को नंगे पैर नहीं चलना चाहिए।
1: जी हाँ,
2: रोज अपने पैरों को साफ करना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों, मुलायम और आरामदायक चप्पल भी आप पहने
1: जी,
2: और अगर पैरों में घाव या फिर फफोले होते हैं तो तुरंत इसका इलाज करवाएं।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ श्रोता साथियों, मधुमेह रोगियों के लिए व्यायाम जरूरी होता है, लेकिन गर्मी में सही समय चुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें सुबह जल्दी या शाम को टहलना है, हल्का योग करना है, प्राणायाम करना है और ज्यादा गर्मी में भारी व्यायाम नहीं करना है।
1: जी जी,
0: व्यायाम शरीर को सक्रिय रखता है और शुगर नियंत्रण करने में भी मदद करता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि बुजुर्ग मधुमेह रोगियों का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गांव में बहुत से बुजुर्ग मधुमेह से पीड़ित हैं, गर्मियों में उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। उसके लिए परिवार के जो लोग हैं उन्हें समय पर पानी देना है, दवा याद दिलानी है, ज्यादा धूप में जाने नहीं देना है, हल्का भोजन देना है और कमजोरी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है।
1: बिल्कुल,
0: बुजुर्ग कई बार अपनी तकलीफ बताने में हिचकिचाते हैं, इसलिए परिवार को खुद ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ श्रोता साथियों, आजकल गलत खानपान और मोबाइल की आदत के कारण बच्चे और युवाओं में भी मधुमेह बढ़ रहा है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे ज्यादा ठंडे पेय पीते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, शारीरिक गतिविधियां कम करते हैं, इसलिए परिवार को बच्चों के खान पान की आदतों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि मधुमेह एक गंभीर लेकिन नियंत्रित की जाने वाली बीमारी है। गर्मियों में यह और अधिक सावधानी मांग सकती है।
2: बिल्कुल,
1: यदि मधुमेह रोगी अपने भोजन, पानी, व्यायाम, दवा और दिनचर्या का सही ध्यान रखे कशिश, तो वे स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: गर्मी के मौसम में छोटी छोटी लापरवाही या बड़ी समस्या का कारण बन सकती है साथियों।
2: हाँ,
1: इसीलिए सतर्क रहना हमारे लिए और अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
2: बिल्कुल,
1: साथ ही अंजलि जी और कशिश, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखे, नियमित जांच करवाए और सकारात्मक सोच को अपनाए तो मधुमेह जैसी बीमारी उसके जीवन की गति को रोक सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हमें स्वयं भी जागरूक होना चाहिए साथियों, और दूसरों के स्वास्थ्य के प्रति भी हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए। सही जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित देखभाल ही मधुमेह रोगियों को स्वस्थ जीवन प्रदान करती है।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल मनीषा, इसी के साथ अगर हमारे साथियों को हम बताएं तो घर की जो पारंपरिक चीजें होती हैं वो भी उनके लिए इस मौसम में फायदेमंद हो सकती हैं।
0: जी हाँ।
2: जैसे कि अंजलि जी, हमारे ग्रामीण और पारंपरिक जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो गर्मियों में शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जैसे कि मटके का पानी, छाछ, बेल का शरबत, बिना ज्यादा चीनी वाला श्रोता साथियों, और जो नींबू पानी और सत्तू का शरबत होता है वो भी श्रोता साथियों हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये जो पेय पदार्थ होते हैं अंजलि जी, ये शरीर को ठंडक देने में सहायक होते हैं।
0: बिल्कुल।
2: लेकिन मधुमेह रोगियों के लिए मात्रा और मिठास का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।
0: जी हाँ कशिश, हम कार्यक्रम के अंत में श्रोता साथियों से यही कहना चाहेंगे कि गर्मियों का मौसम मधुमेह रोगियों के लिए चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इस मौसम को सुरक्षित बनाया जा सकता है।
2: बिल्कुल।
0: पर्याप्त पानी, संतुलित भोजन, नियमित जांच, धूप से बचाव और मानसिक शांति, ये सभी बातें मधुमेह रोगियों के लिए बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, हमें यह समझना होगा कि बीमारी से डरने की नहीं बल्कि समझदारी से उसका सामना करने की जरूरत है।
2: बिल्कुल।
0: यदि गांव-गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तो लोग अधिक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी पाएंगे।
2: जी हाँ।
0: अपने शरीर की छोटी छोटी जरूरतों को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। समय पर सावधानी अपना कर श्रोता साथियों, हम बड़ी बीमारियों और परेशानियों से बच सकते हैं। इस गर्मी में खुद भी जागरूक हमें बनना है और दूसरों को भी हमें जागरूक करना होगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी
2: बिल्कुल। हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही मधुमेह रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
0: और आपके अपने दोस्त कशिश पारशर को
3: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम रोजाना कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर एक नए विषय के साथ हाजिर होते हैं, तो आज भी कार्यक्रम में एक नए विषय को लेकर मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय को लेकर कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं, वो हर उस इंसान के दिल से जुड़ा हुआ है जिसने कभी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखा होगा। जी हाँ साथियों, विषय है सफल लोग किस तरह सोचते हैं। दोस्तों, अक्सर हम किसी सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं, इनकी किस्मत कितनी अच्छी थी, इनके पास मौके थे, इनके पास पैसा था, इनके पास सहारा था। लेकिन साथियों, सच तो यह है कि सफलता सबसे पहले इंसान के दिमाग में जन्म लेती है, फिर सोच बदलती है, फिर आदतें बदलती हैं और फिर जिंदगी ही बदल जाती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर मेरी आपसे ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में दोस्तों, फिर हमारी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों विषय के बारे में मैं आपको गीत से पहले बता चुकी हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि सफल लोग किस तरह सोचते हैं। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि अक्सर हम सफल लोगों को देखकर ये कहते हैं कि इसके पास तो पैसा था इसलिए सफल हुआ, इसके पास सहारा था इसलिए सफल हुआ, या फिर इसको तो मौके बहुत सारे मिले थे। लेकिन दोस्तों सफलता किसी इंसान की किस्मत को देखकर, सहारे को देखकर या फिर पैसे को देखकर नहीं आती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि सफल लोग हमसे अलग नहीं होते, उनके पास भी दिन के वही 24 घंटे होते हैं, वही मुश्किलें होती हैं और वही संघर्ष होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का होता है साथियों कि वे परिस्थितियों को एक अलग तरीके से देखते हैं, या फिर कहूँ कि वो अपनी परिस्थितियों को देखने का तरीका ही बदल लेते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सफल लोग आखिर किस तरह सोचते हैं, किस तरीके की आदतें अपनाते हैं और मुश्किल समय में वे खुद को कैसे संभालते हैं, साथ ही क्यों उनकी सोच भीड़ से अलग होती है। साथियों तो अब यही जानते हैं साथियों कि सफल लोग समस्याओं से नहीं समाधान से जुड़ते हैं। आपको बताऊं दोस्तों तो जीवन में परेशानी हर किसी के पास है। किसी के पास पैसों की समस्या है, किसी के पास समय की कमी है, किसी के पास अवसरों की, तो किसी के पास आत्मविश्वास की। लेकिन दोस्तों सफल लोग हर समय ये नहीं कहते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वे ये सोचते हैं कि अब इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, और यही सोच श्रोता साथियों उन्हें आगे बढ़ाती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का काम बंद हो गया है, एक इंसान बैठकर रोता रहेगा कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन सफल सोच वाला इंसान कहेगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अब मुझे कुछ नया रास्ता खोजना होगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यही है कि सफल लोग समस्या को अंत नहीं मानते, बल्कि एक नई शुरुआत करने का अवसर मानते हैं। इसलिए श्रोता साथियों सफल लोग हमेशा सफल होते रहते हैं, और जो एक मामूली इंसान होता है जो समस्या को देखकर निराश हो जाता है, वो बैठा का बैठा ही रह जाता है। साथ ही आपको बताऊं दोस्तों तो सफल लोग असफलता से भी नहीं डरते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि असफलता हर बड़े इंसान की कहानी का हिस्सा रही है। कोई भी इंसान बिना गिरने के चलना नहीं सीखता दोस्तों। लेकिन फर्क यहाँ ये आता है कि कुछ लोग एक हार के बाद रुक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसी हार से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। दोस्तों सफल लोग जो होते हैं वो असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे कहते हैं कि मैं हारा जरूर हूँ, लेकिन खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं फिर से कोशिश करूंगा। यही सोच श्रोता साथियों उन्हें दोबारा खड़ी करती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इस कार्यक्रम को सुन रहे युवा साथियों, आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से कुछ नहीं सीखना जरूर गलत है। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं साथियों एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में, और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, सफल लोगों की पहचान आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कर रहे हैं और वे सफल होने के लिए किस तरीके की सोच रखते हैं ये भी हम जान रहे हैं। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि सफल लोग समस्याओं से नहीं डरते बल्कि समाधान से जुड़ते हैं। सफल लोग असफलता से भी नहीं डरते हैं। अब यही अगर आपको बताएं श्रोता साथियों, तो सफल लोग जो होते हैं वो बड़े सपने देखने से भी नहीं डरते। यानी कि हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए छोटा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्रोता साथियों, सफल लोग दूसरों की हंसी से नहीं डरते क्योंकि वे ये जानते हैं कि लोग सफल होने पर भी उनका मजाक उड़ाएंगे और असफल होने पर भी उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सफल लोग ये भी जानते हैं कि जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन वही लोग तालियां भी बजाएंगे। साथियों, सफल लोग अपनी परिस्थितियों से बड़े सपने देखते हैं। यानी कि गरीबी हो सकती है, संसाधन कम हो सकते हैं, मदद करने वाला कोई नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों, अगर सोच बड़ी है तो इंसान रास्ता बना ही लेता है, ऐसी सोच वे रखते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि समय दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। ऐसे में सफल लोग समय को खर्च नहीं करते बल्कि समय का निवेश करते हैं। जब बाकी लोग दोस्तों सिर्फ शिकायतों में समय बिताते हैं, तब सफल लोग सीखने में, मेहनत करने में और खुद को बेहतर बनाने में समय लगाते हैं। इसी कारण से धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगती है और वे आगे ही बढ़ते जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, सफल लोग कभी ये नहीं सोचते कि अब मुझे सब कुछ आ गया है। वे हमेशा सीखते रहते हैं नई बातें, नए अनुभव और नई तकनीक। वे खुद को लगातार श्रोता साथियों बेहतर बनाते रहते हैं क्योंकि वे ये जानते हैं कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी तरक्की भी रुक जाती है। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगी कि किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना और अनुभवों से सीखना, ये सब सफलता की सीढ़ियां है और इस बात को सफल लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि जब पूरी दुनिया आपको कमजोर समझती है, तब भी श्रोता साथियों, अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो यही भरोसा आपको जीत तक ले जाएगा। सफल लोग हर समय दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करते बल्कि वे अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। कई बार रास्ता मुश्किल होता है साथियों, कोई साथ हमारा नहीं देता है, लोग बातें भी बनाते हैं, लेकिन सफल लोग अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाते क्योंकि वे जानते हैं कि अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो दुनिया क्यों ही करेगी। इसलिए श्रोता साथियों, सफल होने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना। क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। तो साथियों, कहना चाहूंगी कि सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस अलग तरीके से सोचते हैं। वे हार में भी सीख देखते हैं, समस्या में भी अवसर को देखते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर दोस्तों हम भी अपनी सोच बदल लें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। याद रखिए, सफलता पहले सोच में आती है फिर जीवन में। इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। अंत में आपसे यही कहूंगी कि अपने सपनों को छोटा मत होने दीजिए, मेहनत करिए, सीखते रहिए और उड़ान भरते रहिए। क्योंकि दोस्तों, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ साथियों, इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। जाते जाते आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही और गीत संगीत रहे वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: भाई ने बोलो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हैं, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हैं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: होवे आज नाना ना कदम है, ई आबा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए?
1: नाना अंजलि बुंद, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिया हैं, ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।